ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि। तदनुसार 19 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: बड़ी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक

0: आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
2: ये है विविध भारती।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला और कुछ नहीं है, इसलिए जिसे भी ईश्वर में जरा भी विश्वास हो उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला और कुछ नहीं है, इसलिए जिसे भी ईश्वर में जरा भी विश्वास हो उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये संसार एक माया लोक है और इस लोक में आकर स्वयं प्रभु भी रचते हैं लीलाएं, स्वयं ही हरते हैं जीव के मन से माया मोह के बंधन और करते हैं बंधन मुक्त भी, किंतु उनकी माया का रस अनोखा है।

जरा सोचिए तो, कौन होगा उस प्रभु से शक्तिशाली, जिनके इशारे पर नाचती है ये दुनिया सारी, उस पर भोलापन ऐसा कि प्रसन्नता से दुनियावारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुनेंगे। आज सुनेंगे 224वां भाग। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। दूसरी कड़ी आज सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 6:45 से। 7 बजे से भूले बिसरे गीत।

बजकर 30 मिनट से हम है राही प्यार के 8 बजे से सुनिए समाचार प्रभात, 8:15 से कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष, लेखन मिलिंद सबनिश का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 8:30 से चित्रलोक और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 बजे से सुन सकते हैं पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश का पुनः प्रसारण। 11 बजे से रंग तरंग, 12 बजे से हिंदी में समाचार और 12:05 से सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे का समय है सुरीला सफर कार्यक्रम का और 2 बजे से पुनः प्रसारण होगा वंदे मातरम एक जय घोष कार्यक्रम का। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से आनंद लीजिए सदाबहार नकमे कार्यक्रम का। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनेंगे 3 बजे से। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए कहानी ज्वालामुखी। कहानी का लेखन और वाचन किया है निवेदिता श्रीवास्तव निवी ने, संपादन काजल भदरगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। शाम 5 बजे से छाया गीत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से सुनिए हिंदी में समाचार। 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने और शाम 6:30 से झरोखा के अंतर्गत सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रम का विवरण। शाम 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा और इस कड़ी की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे। शाम 7 बजे से जयमाला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। पुरातत्व के तत्व ये झलके सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन नाजनीन का, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का।

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 बजे से सुनिए छाया गीत। 10:30 से ढलती जाए रात। 11 बजे से कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

आपको एक बार फिर से बता दें, वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 33वीं कड़ी आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 बजे से। और ये कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं झरोखा के अंतर्गत, जिसमें आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम श्री रामचरितमानस की 224वीं कड़ी सुनिए।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न

उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है और स्वागत है जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एस एल कंडारा साहब का।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: पंडित जी, पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण भारत में वॉयलिन का आगमन हुआ, ये प्रचलित हुआ वाद्य, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ लोकप्रिय होने लगा। पहली बार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के हाथ में ये वाद्य दिखाई दिया, आप बता रहे थे, इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे कि और किन कलाकारों ने इस वाद्य को सीख करके इसे प्रचलित करने का, इसका प्रचार करने का प्रयास किया।
2: देखिए जयंत जी, वायलिन क्लासिकल म्यूजिक में और फिल्म म्यूजिक में
1: जी,
2: दोनों में बहुत प्रचलित हुआ। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें अपन पहले, तो क्लासिकल म्यूजिक में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बाद उनके शिष्यों में से पंडित विजी जोग, गजानन राव जोशी जी जो महाराष्ट्र के
1: जी जी,
2: उन्होंने भी इस बाजे को बहुत अच्छे से देखा और संभाला और इस पे काम किया। एन राजम जी जो अभी वर्तमान में हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस बाजे पे अच्छा काम किया। दाता जी,
1: डीके दाता, हाँ,
2: ये सब लोग बजाते रहे। लेकिन जोग साहब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जोग साहब ने इस बाजे को एक्सेप्टेबल बनाया, लार्जली
1: जी
2: वाइडली एक्सेप्टेबल ये बाजा बना उनके कंट्रीब्यूशन से। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि वो सोलो वायलिन तो बजाया ही उन्होंने बहुत, लेकिन गवैयों की संगत भी उन्होंने बहुत की। उनमें कई सारे बड़े गवैये जिनके साथ वो बैठ के उनकी संगत की और इसको एक्सेप्टेबल बनाया। गवैयों के अलावा उन्होंने कई सारी जुगलबंदी बजाई, जो जुगलबंदियां आज भी रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, अपना पंडित रामनारायण जी के साथ, मेरे गुरुजी के साथ, और भी कई लोगों के साथ। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन ये बहुत ज्यादा रहा कि
1: बहुत बड़ा योगदान है,
2: योगदान रहा
1: जी जी।
2: और उन्होंने इस बाजे का जितना अच्छा टोन प्रोड्यूस किया, एक खूबी जो उनकी, बहुत कम लोग वाकिफ हैं इससे कि जितना अच्छा ध्वनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि
1: जी,
2: अंग्रेजी में कहते हैं टोन, टोनल क्वालिटी, उनके इंस्ट्रूमेंट में थी, वो किसी वायलिन वादक के इंस्ट्रूमेंट में इतनी अच्छी ध्वनि शायद संभव नहीं है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अभी ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं है, तो लेकिन ये है कि ये सर्वमान्य सत्य है कि उन्होंने बहुत अच्छा टोन निकाला बाजे पे।
1: पंडित जी, यहाँ लगे हाथों एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये वाद्य पश्चिम से हमारे यहाँ आया है, तो पश्चिम में जिस तरह से ये इसका स्वरूप था, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनाने के बाद में क्या इसमें कोई बदलाव किया गया, किसी ने कोशिश की कि इस भारत के संगीत के अनुरूप ये बजे, इसके लिए प्रयास हुए होंगे निश्चित रूप से?
2: जैन जी, ये थोड़ी सी दुखद स्टोरी है
1: जी
2: कि कुछ लोगों ने प्रयास किया और वो असफल रहे इसमें
1: जी।
2: अपने आप में ये कम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, परिपूर्ण वाद्य है ये, और जिस जिसने भी इसके साथ छेड़छाड़ की है
1: जी,
2: वो बुरी तरह से असफल हुए हैं। कुछ लोगों ने इसमें तरब लगा दी और तरब लगा के बजाना शुरू किया, तो वो ना तो वायलिन रहा ना सारंगी बन पाया। सारंगी का जो टोन है वो अलग टोन है, वायलिन का टोन अलग है, वो तो कोई तीसरी बात हो गई, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। और वो फेल्यूर जो इन लोगों के हैं वो अपनी जगह पे खत्म हो गए। वह बाजा आज भी चार तार के सिवा नहीं बजता है।
1: जब वाद्य ही परिपूर्ण है तो उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश?
2: एग्जैक्टली
1: जी।
2: और जोग साहब ने चार तार पांच तार के साथ ही बजाया इसको, एक तार उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, पर बजाया उन्होंने चार ही तार से ज्यादा।
1: आप पंडित जोग साहब के बारे में बता रहे थे
2: जी, तो जोग साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इस बाजे को पॉपुलर किया। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये, जितना साउथ इंडिया में है
1: जी।
2: हर फंक्शन में

0: इवेंट में इस बाजे का उपयोग होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वायलिनिस्ट हुए हैं, राइट फ्रॉम चौड़ैया टू MS गोपाल कृष्णन और
1: लालगुड़ी
0: जयरामन। इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको पॉपुलराइज करने में। और भी लोग हैं
1: समकालीन कलाकारों में, एल
0: सुब्रमण्यम जी हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो सक्सेस मिली है वो इनकी जोग साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से।
2: पंडित वीजी जोग साहब की आप बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को उन्हीं का बजाया हुआ राग श्याम कल्याण सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल जरूर सुनवाएं।

पंडित वीजी जोग का वायोलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण आप सुन रहे थे श्रोताओं। और आइए अब इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना आपको सुनवाते हैं, गायक स्वर ए हरिहरन।

0: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

रामी धुबन फिल्म के इस गीत के साथ ही याद किया फिल्म निर्माता और संगीतकार हिरेन बोस को उनके पुण्यतिथि पर, करते हैं उन्हें नमन। और रामी धुबन फिल्म का ये गीत आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में, राम मूर्ति ने इसे लिखा, हिरेन बोस का संगीत था। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हसरत जयपुरी की बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आह फिल्म के इस गीत में शंकर जयकिशन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे की।

0: अरे जा जा जा जा,
1: अरे सुन सुन सुन सुन,
0: जा जा।
2: आर पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, भूले बिसरे गीत।

0: बाराती फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में सुन रहे थे। तन्वी नकवी ने इसे लिखा, रोशन का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अफसाना फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे, असद भोपाली के बोल, हुस्नलाल भगतराम का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आंसू फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। कमर जलालाबादी के बोल पंडित हुसनलाल भगत राम का संगीत। इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल स्वरों में आप सुन रहे थे दाग फिल्म से गीत। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें जुगनू फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक

0: संगीत में बांसुरी की भूमिका पहली जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें छलिया फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जंजीर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

राजा रानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं जीत फिल्म का ये गीत। सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में जीत फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इसके साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।

0: 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
4: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक

0: बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

0: चर्चाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुणे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
3: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
4: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
3: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
5: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं।

0: और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कदम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत आइए करते हैं वाजिद और श्रेयांश घोषाल की आवाजों से। फिल्म का नाम है बुलेट राजा। इस गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

कार्यक्रम का अगला गीत ये जवानी है दीवानी इस फिल्म से आवाजें हैं श्रीराम और शिल्पा राव की। इस गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, वहीं धुन बनाई है प्रीतम ने।

रांझणा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं सिराज और जसविंदर सिंह की आवाजों में। बोल है इरशाद कामिल के, धुन है ए आर रहमान की।

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत लीजिए सुनिए, पीकू फिल्म से आवाज अनुपम रॉय की। इस गीत के बोल और धुन बनाई है अनुपम रॉय ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

0: जय हो शुभ हो माय डियर रेडियो लवर्स, आप सबकी फेवरेट वाणी आकाशवाणी जोधपुर पर शुरू हो चला है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार, तो फिर चलिए नमस्कार कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छी बात से, और वो अच्छी बात ये है कि न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए, चार दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। और ध्यान रखिए, न परेशान किसी को कीजिए न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए।
1: और मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए इस प्रोग्राम में जो कि है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और इस सशक्त जो

0: हमारा प्रोग्राम है, उसके पीछे एक सशक्त टीम भी हमारे साथ हाजिर है, उसका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। ट्रांसमीटर पर हैं प्रकाश पवार, चंद्रराम पटेल और श्रोताओं कंट्रोल रूम से नियंत्रण कमान संभाल रहे हैं प्रवीण कुमार और नरेंद्र सिंह राठौर। आज के अनाउंसर्स ऑन ड्यूटी कंसोल पर प्राइमरी चैनल पर हैं शैला और एफएम पर हैं कविता। इस खूबसूरत कार्यक्रम की प्रस्तुति है और संयोजन है राजेश लामरोड का। और आज इस प्रोग्राम में जिन दो आवाजों को आप सुन पा रहे हैं वो सूत्रधार के रूप में मैं हूँ नेहा रांकावत
1: और न्यू न्यू नूतन सोने।
0: और इस टीम के परिचय के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, तो लीजिए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, सफर किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही जरूरी, और साथ ही साथ देखा जाए तो जिंदगी भी तो एक सफर ही है, है ना?
4: बिल्कुल। और इस सफर में जो हमें अनुभव मिलते हैं और जो एक यादों का खजाना वापस हम सफर करके जब पहुंचते हैं घर पे, तो वो एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। और वो जो अनुभव है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें एक सेटिस्फेक्शन देता है और हमारे जीवन को कहीं ना कहीं समृद्ध करता जाता है। और एक बात भी कही गई है कि मंजिल से बढ़कर सफर का मजा होता है और रास्तों में ही जिंदगी का असली पता होता है।
3: बिल्कुल। लेकिन सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने का नाम ही तो नहीं होता। मुझे लगता है कि सफर का मतलब नए लोगों से मिलना, नए ख्यालात अपने साझा करना, उनसे रूबरू होना, अपने नए तजुर्बे हासिल करना और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश करना। और शायद इसी वजह से हमें जो है नई चीजें सीखते रहना चाहिए, लोगों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए और जिंदगी से उनके उसके सारे रंगों से हमें बहुत ही अच्छे से रूबरू होते रहना चाहिए।
4: बिल्कुल। और ये जो सफर है ना नेहा, वो दुनिया को देखने का एक अलग ही हमें नया नजरिया दे देता है। और जब हम सफर तय करते हैं ना, तो जब पहाड़ों को देखते हैं तो पहाड़ों की जो ऊंचाइयां होती है ना, वो हमें सपने देखना सिखाती है। और नदियों का जो कलकल बहता हुआ पानी होता है, वो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना सिखाता है। और जो रास्तों की कठिनाइयां होती है ना, वो हमें पेशेंस और एक तरह से संघर्ष का जो एक महत्व होता है ना, वो सिखाता है।
3: बिल्कुल।

0: दोस्तों आप सफर कर रहे हैं और अगर आपने सफर में अपने साथ जो सामान है आपका लगेज है वो काफी सारा कैरी करके रखा है
1: यानी कि ओवरलोडेड हो गए हैं।
0: बिल्कुल, तो क्या आप चल पाएंगे?
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक रास्ते से दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह जब हम ट्रेवल करते हैं तो सामान ज़्यादा नहीं रख पाते हैं, उसी तरीके से हमारे ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें भी हमें लगेज ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, बताती हूँ तुम्हें एक कहानी है। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुँचता है। वो बहुत ज़्यादा निराश था, बहुत ही परेशान अपनी ज़िंदगी से। तो उसके गुरु ने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्यों परेशान हो तुम? तो वो बोलता है मेरे जो जीवन में है समस्याएं ही समस्याएं हैं, मैं बहुत निराश रहता हूँ। कभी असफलता आती है, कभी लोगों की बातें मेरे बीच में मेरे दिमाग में आती रहती हैं, कभी भविष्य की चिंता मुझे सताती है, मैं थक गया हूँ इन सब से। तो तुम्हें क्या लगता है उसने क्या बोला होगा गुरु ने?
1: गुरु ने बस यही बोला होगा कि तुम बताओ कि तुम क्या ढो रहे हो, एक्चुअल में कर क्या रहे हो।
0: जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से गुरु तो उसकी बात पर मुस्कुराने लग गए। उन्होंने उसे एक थैला दे दिया और बोला कि इसमें कई पत्थर हैं, तुम इसे उठाओ, कंधे पर रखो और मेरे साथ चलो। और बहुत अजीब सी बात थी कि उन्होंने ऐसा उसको करने के लिए बोला। तो ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपने जो व्यक्ति था अपने गुरु की बात मानता था,
1: उसमें कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होगा।
0: होगा, बिल्कुल होगा। तो वो कुछ दूर तक अपने उसने बात मानी और मैं वो उस बोझ को उठाते हुए चलता रहा। कुछ देर तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे जो था थैले का भार उसको बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। उसके कंधे जो थे दर्द करने लगे। जाहिर सी बात है दर्द तो होंगे। तो गुरु ने पूछा कैसा लग रहा है? तो व्यक्ति बोला कि बहुत भारी, अब और चला भी नहीं जा रहा मुझसे। तो उसके गुरु ने पूछा, कहा कि इस थैले में रखे हर पत्थर पर एक नाम लिखा है, उसको पहले देखो। तो उस व्यक्ति ने उसको थैले को खोला, उसमें से एक पत्थर निकाला जिस पर लिखा था बीती हुई गलती। ठीक है, तो किसी पर दूसरों की राय लिखा था, दूसरा पत्थर उठाया तो उस पर लिखा था भविष्य की चिंता, किसी पर लिखा था असफलता का डर, ये सब लिखा हुआ था। तो गुरु ने उसको बोला एक एक करके वो जो पत्थर हैं आप निकालते जाओ और उन्हें तुम्हें अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो उस व्यक्ति ने उस बीती हुई गलती वाले पत्थर को निकाल दिया, उसे थोड़ा सा बोझ थोड़ा कम फील हुआ। फिर उसने दूसरों की राय और भविष्य की चिंता वाले पत्थर भी निकाल दिए। अब तो

0: बहुत ज्यादा
1: और ये वाला जो पत्थर होता है ना, बड़ा भारी होता है।
0: दूसरों की राय वाला। हाँ, जो अब तो थैला क्या होना था, हल्का ही होना था। तो उसके गुरु ने उसको एक बात बताई कि ये जो जीवन है उसका सबसे बड़ा फलसफा यही है कि हम अक्सर जो है दुखों से नहीं बल्कि अपने उन्हें ढोने की आदत से जो है थक जाते हैं। अपनी बीती हुई बातें सोचते हैं, लोगों के विचार और आने वाले कल की चिंता हमारे जो है कंधों पर रखे उन पत्थरों की तरह हमें समझ आती है जिन्हें हम स्वयं उठाए रखते हैं। और
1: यानी कि नेहा, जब हम सफर शुरू करते हैं और एक्स्ट्रा लगेज ले लेते हैं, जिन चीजों की हमें सफर में कहीं जरूरत भी नहीं होती है, बस
0: अननेसेसरी। हाँ,
1: हम ले लेते हैं उठा के, कि चलो लगेज को बस भरना है हमें, तो उसी तरह से तुम कहना चाह रही हो कि जिंदगी का जो सफर है उसमें भी हमें जो अन जो
0: अनवांटेड
1: जिसकी
0: जो भी
1: हाँ
0: हम
1: अनवांटेड,
0: थॉट्स जो है
1: मतलब
0: हमारे,
1: बिल्कुल जिनकी जरूरत ही नहीं है,
0: बिल्कुल
1: उनको साथ में कतई नहीं रखना
0: जी हाँ।
1: चाहिए।
0: तो उसके जो गुरु ने उसको अंत में यही बात की थी कि जीवन का जो सफर है वो हल्का तब नहीं होता जब रास्ते आसान हो जाएं, बल्कि तब होता है जब हम अनावश्यक जो बोझ है उसे उतारना सीख जाते हैं।

0: भी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
5: 12 साल विश्वास के।

0: डियर रेडियो लवर्स, हम सफर पे निकलते हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं और हम चाहते भी हैं कि सफर में जो है हमें बहुत सारे लोगों का साथ मिले। ठीक उसी तरह से जिंदगी का जो सफर है उसमें भी हम सोचते हैं कि हमको बहुत सारे लोगों का साथ मिले, और वो जो बहुत सारे लोग होते हैं ना उनमें से भी अपन चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हों जो हमारी खुशी में भी साथ रहे और गम में भी साथ रहे।
1: बिल्कुल, तो जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा होता है ना नूतन, कि वो कितना भी लंबा या फिर मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगता है कि सच्चे दोस्त अगर हमारे साथ हों रास्ते आसान लगने लगते हैं। और केवल हम सफर ही नहीं होते, वे दोस्त वे हमारे हर खूबसूरत लम्हे का या दुख के लम्हे के साथ ही होते हैं।
0: हाँ, और जो हमारा स्ट्रेस होता है ना उसको एकदम से कम कर देते हैं, और जो हमारी एनर्जी होती है उसको एकदम से बढ़ा देते हैं दोस्त जो होते हैं।
1: बिल्कुल, और जो उसी राह में जब हमारे साथ वो चलने लगते हैं तो वो राह भी दिखाते हैं, कुछ हौसला भी बढ़ाते हैं, कभी खुद अपने अपनी मौजूदगी से अपनी थकान जो है वो मिटा देते हैं, उसको मुस्कान में बदल देते हैं। जब हमें मंजिल दूर लगने लगती है तब वो दोस्त जो होते हैं वो हमारे होप बनकर आता है और हमारे जो है मंजिल को करीब ले आता है।
0: दोस्त भी होते हैं इस सफर में, और एक होता है हम सफर जो सबको बहुत प्यारा होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है, और उस हम सफर से उम्मीद की जाती है कि वो बस हमें जज ना करे, बस हम वो हमें सुने और बस हमें प्यार दे और प्यार से बातें करे और इस सफर को बहुत ही जानदार और अच्छा बना दे जिंदगी के सफर को।
1: बिल्कुल, तो पर ये बिताए गए जो पल होंगे उसमें छोटी मोटी नोक झोंक होती रहेगी, लेकिन हंसी मजाक भी होता बनता है, और अनगिनत यादें आपको उम्र भर की जो है वो दिल के किसी कोने में महफूज हुई मिलती है जब आपके साथ एक हसीन हम सफर होता है।
0: बिल्कुल।

0: और बिल्कुल श्रोताओं, आपकी जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा संवर जाती है जब आपको एक खूबसूरत हमसफर आपकी राह में मिल जाता है। और हमसफर वही होता है, वो नहीं होता जो सिर्फ राहों में आपके साथ चले, वो जबकि वो होता है जो आपकी खामोशियों को भी समझ ले, मंजिलें बदल जाएं। तो कोई बात नहीं, बस साथ चलने वाला अपना हो यही काफी है।
1: हाँ, और इससे जो है ना नेहा, रास्ते आसान हो जाते हैं जब कोई साथ चलने वाला मिल जाता है। और ये जो जीवन है ना, लंबा सफर है, इसमें कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी मुश्किलों की छांव होती है। तो ऐसे में एक अच्छा हमसफर जो होता है ना, वो हमारे जीवन को जो बड़ा सुंदर बना देता है। श्रोताओं, अब 9 बजने वाले हैं और अब प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, और कार्यक्रम में हम फिर से लौटेंगे 9:10 पर।
2: हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के संचालन के लिए प्रदेश भर में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश में सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान 25 से कम कर्मचारियों वाले लघु उद्यम हैं। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 जगहों पर होंगे।
4: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
3: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
5: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
3: 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल पारदर्शी पानी की बोतल और प्रवेश पत्र रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ही ले जा सकते हैं। कलावा, पगड़ी या हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक और पूरी बाजू के कपड़े पहनने वाले अभ्यर्थियों को सघन जांच के लिए समय से पहले पहुंचना होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारी आभूषण और धातु की वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरी ओर परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पेपर लीक जैसी किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्रदेश भर में विशेष टीमें तैनात की हैं। ये टीमें कोटा, सीकर और जयपुर जैसे प्रमुख कोचिंग शहरों में शिक्षण संस्थानों, हॉस्टलों, पीजी और सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। पांचना बांध से सिंचाई जल के गतिरोध को सुलझाने के लिए प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं। इस मुद्दे पर आज भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक संयुक्त बैठक रखी गई है। बैठक में सभी पक्षों से चर्चा कर विवाद का हल निकालने और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर सहित सवाई माधोपुर के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहरों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से रखी। गौरतलब है कि करौली के किसान प्रतिनिधि महापंचायत में व्यस्त होने के कारण कल की बैठक में भाग नहीं ले पाए थे, इसलिए आज फिर से बैठक रखी गई है। प्रदेश के लूनी बांध का नाम अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा जाएगा। जल संसाधन राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ब्यावर के आशापुरा माता धाम में आयोजित एक समारोह में ये घोषणा की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इतिहास में वीरों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट आई है और हीट वेव से पूरी तरह राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात के पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के वायुमंडल में बने नए सिस्टम से हवाओं की नमी में तेजी से बदलाव आया है। इससे आज राज्य के सभी संभागों में बारिश के आसार हैं। 15 जिलों में बारिश

का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह हल्की बरसात की संभावना है। इस बीच कल दोपहर बाद चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में मौसम अचानक बदला और तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। झुंझुनू और नवलगढ़ में ओले भी गिरे। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ. प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और

0: योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी प्रभारी मंत्री और अधिकारी कल ही अपने निर्धारित जिला मुख्यालयों पर पहुंच जाएंगे। इस बीच योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। जगह जगह योग शिविरों के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर योगा चैंपियंस के साथ योग किया। इधर हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि आज शहर के विश्व प्रिय शांति पार्क में सामूहिक योगाभ्यास किया गया।
1: शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित जनों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीर्षासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन एवं श्वासासन जैसी महत्वपूर्ण योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। प्रशिक्षकों ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों का प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित योग अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तनाव दूर होता है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के पारदर्शी संचालन के लिए कोचिंग शहरों में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश के सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जिसमें बातें करते हैं बहुत सारी और ढेर सारी जानकारियां आपको देते हैं और सुनाते हैं गाने भी।
1: बिल्कुल, और अब आपको ले चलते हैं इतिहास के कुछ पन्नों में। आज ही के दिन सन 1865 में अमेरिकी राज्य टेक्सास में दास्ता की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा हुई थी और इस दिन को आज जूनटींथ के रूप में मनाया जाता है। सन 1910 में आज ही के दिन पहली बार फादर्स डे मनाया गया था और ये आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के स्पोकेन नगर में हुआ था। सन 1963 आज ही का दिन 19 जून विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटिना टेरेस्कोवा ने अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन के बाद पृथ्वी पर सफल वापसी की थी। और आज ही के दिन 1978 में लोकप्रिय कॉमिक कैरेक्टर गारफील्ड पहली बार अखबारों में प्रकाशित हुआ था।

श्रोताओं, हिंसा एक तरह का अपराध है और उसमें भी यौन हिंसा से बड़ा कोई अपराध नहीं। तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, ये दिवस हर साल 19 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा के जो पीड़ित होते हैं उनके प्रति एकजुटता व्यक्त करना और ऐसी हिंसा को एक तरह से युद्ध अपराध के रूप में पहचानने के लिए जागरूकता बढ़ाना और अपराधियों को जवाबदेह ठहराना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 जून को यानी कि आज ही के दिन इस विशेष दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय यौन हिंसा की रोकथाम पर सुरक्षा परिषद के ऐतिहासिक प्रस्ताव जो कि 2008 में आया था उस प्रस्ताव को याद दिलाने के लिए किया गया था। और बात करें इस दिवस के पहचान की तो समकालीन संघर्षों में यौन हिंसा यानी कि बलात्कार या यौन दासता इसका जो उपयोग अक्सर युद्ध की एक रणनीति के रूप में

समुदायों को आतंकित करने और आबादी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये मानवता के खिलाफ एक तरह से अपराध है श्रोताओं। और युद्ध क्षेत्रों में जो जीवित बचे लोग होते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उनके लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, कानूनी सहायता और सुरक्षित आश्रयों की आवश्यकता पर जोर देता है ये दिवस। और इस दिवस का उद्देश्य अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कड़े कदम उठाने की अपील करना है।

श्रोताओं, आज जन्मदिन है ओक्रम इबोबी सिंह का, जो भारतीय राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ये पद 7 मार्च 2002 को ग्रहण किया। 2012 विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी को 60 में से 42 सीटें उन्होंने जीती थी। ये वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी हैं। श्रोताओं, ओक्रम इबोबी सिंह का जन्म अथोकपम माखालीकी थोबल जिला मणिपुर में हुआ था। वह अपने 5 भाइयों और 3 बहनों में सबसे बड़े हैं। उन्होंने इम्फाल में डीएम कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और आज इनके जन्मदिन पर हम इन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
7: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

दोस्तों मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में वक्त हो चला है काम की बात जानने का। और काम की बात ये है कि केंद्र सरकार ने दवाओं की सुरक्षा और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए ड्रग्स रूल्स 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। जी हाँ श्रोताओं, इसके तहत शेड्यूल के की जो सूची थी उसमें सिरप शब्द को हटा दिया गया है और इस बदलाव के बाद कफ सिरप सहित सिरप आधारित दवाओं की बिक्री पर अधिक नियंत्रण लागू होगा और उनके निर्धारित दवा विक्रय नियम भी प्रभावी होंगे। शेड्यूल के तहत उन दवाओं को सूचीबद्ध किया जाता है श्रोताओं जिनमें कुछ नियामकीय प्रावधानों से छूट प्राप्त होती है। रूल 123 के अंतर्गत सूचीबद्ध दवाओं को दवा बिक्री संबंधित

कुछ शर्तों से राहत मिलती थी, अब सिरप शब्द को इस सूची से बाहर किए जाने के बाद सिरप श्रेणी की जो दवाएं थी वो इस छूट के दायरे में नहीं रहेंगी। और स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से कफ सिरप के अनियंत्रित उपयोग और दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी भी अधिक प्रभावी हो सकेगी। और हाल के वर्षों में कुछ देशों में भारतीय निर्मित सिरप में जो कुछ दूषित तत्व पाए जाने की वजह से और बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव भी दिखा था, ऐसी घटनाओं के बाद में सरकार द्वारा सुरक्षा को लेकर अब अधिक सतर्कता हो गई है।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे।
1: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रोताओं, जंगल की खामोशी में जब हल्की सी आहट गूंजती है तो समझ लीजिए प्रकृति का एक अद्भुत शिकारी अपने कदम बढ़ा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेपर्ड की, यानी कि तेंदुए की, जो अपनी फुर्ती, ताकत और चतुराई के लिए जाना जाता है। तेंदुआ केवल एक वन्य जीव नहीं है श्रोताओं, बल्कि प्रकृति की एक अनमोल धरोहर है। इसकी चमकदार खाल पर बने काले धब्बे इसे जंगल का सबसे आकर्षक जीव बनाते हैं। तेंदुआ पेड़ों पर चढ़ने में बेहद माहिर होता है और अपने शिकारी को भी पेड़ों पर ले जाकर सुरक्षित रख सकता है। यह एक ऐसा शिकारी है जो धैर्य, गति और बुद्धिमत्ता का एक तरह से अद्भुत संगम है श्रोताओं। जंगल की पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में तेंदुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह जो महत्वपूर्ण जीव है तेंदुआ, इसकी जो संख्या है वो अभी पाली और जमाई के आसपास बड़ी है, और इस संख्या को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहे और क्या इसका प्रभाव है, इस पर चर्चा करने के लिए हम आज फोन आउट माध्यम के जरिए जुड़ रहे हैं कस्तूरी सुले से, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2019 बैच से हैं, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पाली डिवीजन से। तो आइए हम उनसे फोन आउट माध्यम से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि लेपर्ड्स की संख्या अभी बड़ी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी कि हम सबके प्रयासों से ये लेपर्ड की संख्या अभी बहुत बड़ी है।
0: जी मैम, और ये संख्या कितनी बड़ी है मैम, हम इसको कैसे मापें?
1: अभी अगर हम देखते हैं तो

0: वाटर होल सेंसस तरीके से तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर साल एक अनुमानित गणना करता है हर वन्य जीवों की, और वो ही हम एक बेसलाइन डेटा की तरह मानते हैं। हाउएवर इस साल राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार हमने हर प्रोटेक्टेड एरिया में साइन सर्वे, लाइन ट्रांजेक्ट और कैमरा ट्रैपिंग जैसे टेक्निकों से भी लेपर्ड की संख्या की गणना की गई है। और हम अभी देख सकते हैं 2022 में लगभग 30 लेपर्ड ही पाली जिले में थे और इस साल हमें लगभग 63 मिले हैं, तो 4 साल में उनका नंबर डबल हो गया।
1: बहुत ही अच्छा मैम। और फ्यूचर में भी जो है इनकी संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है, उसके क्या कारण रहेंगे मैम?
0: बिल्कुल, अभी हम देख सकते हैं जो संख्या बढ़ी है, महत्वपूर्ण कारण है जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें लेपर्ड को शेड्यूल 1 स्पीशी का दर्जा दिया है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उसको वहां दिया गया है, जिसकी वजह से उसके हंटिंग या फिर उसके कोचिंग पे कंप्लीट बैन है। ये एक बहुत ही बड़ा सजा हो सकती है उसके लिए, इसलिए लेपर्ड की हंटिंग अभी लगभग हमारे यहाँ बंद ही है।
1: बिल्कुल मैम, ये
0: दूसरी चीज है कि जवाई जैसे क्षेत्रों में लेपर्ड की वजह से अभी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ रही है, लोगों को इनकम का इनकम जनरेशन का एक सोर्स मिला है बिकॉज इको टूरिज्म वहाँ बढ़ रहा है, इसकी वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं और खुद भी लेपर्ड की सुरक्षा में काफी ध्यान दे रहे हैं।
1: बिल्कुल मैम, ये बहुत मजबूत कदम है एक तरह से हंटिंग रोक देना। और हमने सुना है कि इनके जो आराम का समय होता है रात में टॉर्च जलाने से, जो नाइट सफारी में जो लेपर्ड्स होते हैं और भी जो दूसरे वन्य जीव होते हैं उन पर बड़ा मतलब प्रेशर पड़ता है, वो दबाव में आ जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो लेपर्ड को जैसे कुछ लोग हैं वो अशोर्ड साइटिंग के नाम से उनको मरी हुई बकरी डालना या फिर कुत्ते को बांध के रखना या रात में जाके उनके जो केव होते हैं उसके पास जाके टॉर्चर्स जलाना, ये कार्य बहुत ही हिंस्रक और बहुत ही क्रूर कार्य मैं मानती हूँ। तो ये तो ना ही वन्य जीवों को डिस्टर्ब करता है बल्कि उनको ज्यादा एग्रेसिव या हिंसक बना सकता है, तो इससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ने की बहुत बहुत बहुत संभावना होती है।
1: बिल्कुल,
0: और अपनी जगह छोड़कर वो जा सकता है, अपने उसके लेपर्ड के बच्चों पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है कि वो आगे जाके मानव के बारे में बहुत ही गुस्से से देख सकता है।
1: हाँ, क्योंकि मानव के लिए तो एक मात्र मनोरंजन हो जाता है कि टॉर्च जला के उनको देखना, अपना मनोरंजन करना, लेकिन उस प्राणी के लिए बहुत ही ये मुश्किल हो सकती है।
0: और ये जो चीज है ये बहुत गंभीरता से देखी गई है, इसको जो मैंने आपको कहा था हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसको हंटिंग की श्रेणी में ही माना जाता है, तो ये बहुत ही गंभीर सा एक इल्लीगल कृत्य है और ये करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको बहुत बड़ी बड़ी सजा होती है।
1: बिल्कुल मैम, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम आपने उठाया है। और तेंदुओं और उसके शिकार की स्थिर आबादी सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने क्या प्रयास किए हैं मैम?
0: सबसे पहले तो सुरक्षा और निगरानी हम रखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी ऐसा इलीगल काम ना करे, इसके लिए हम दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे पास अभी वायरलेस सिस्टम आए हैं, कैमरा ट्रैप्स है, ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग लेपर्ड का करते हैं। इसके अलावा जो मूल कारण होता है कि जंगली जानवर बाहर आने का, जैसे पानी हो या फिर खाने के लिए बाहर आता है, मेटिंग के लिए बाहर आता है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वन क्षेत्रों में भी पानी की व्यवस्था हम करते हैं, जैसे नाड़ी निर्माण करना, एविकट निर्माण करना, सोलर पावर्ड वाटर होल बनाना। इसके अलावा वृक्षारोपण और चारागाह विकास करने से उनका प्राकृतिक वास जो है वो और बेहतर बन जाता है, तो उनको बाहर आने के लिए ज्यादा एनकरेजमेंट नहीं मिलता है। पिछले साल से हमने ट्रे बेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर भी बनाया है, मतलब जो शिकार प्रजाति है उनको बढ़ावा देने के लिए एक एनक्लोजर बनाया है।
1: वाह मैम, बहुत ही सराहनीय प्रयास किए गए हैं।
0: बिल्कुल, इसके अलावा वन्य जीवों के बारे में जागरूकता हम करते हैं और मुझे इस बात का भी बहुत खुशी है कि आपके आज के प्रोग्राम से भी बहुत जो दर्शक सुन रहे हैं उनके बारे उनको भी लेपर्ड के बारे में जागरूकता निर्माण हो जाएगी।
1: बिल्कुल मैम, और जो तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है इसका जो है इको

0: सिस्टम पर क्या संभावित असर होगा मैम?
1: देखिए तेंदुआ जैसे हम टाइगर को देखते हैं वैसे तेंदुआ एक अपेक्स प्रेडेटर प्रजाति है उसके इकोसिस्टम में. तो जो हमारे शाकाहारी जानवर है जैसे हिरन है, खरगोश है, नीलगाय है, उनकी संख्या को वो कंट्रोल में रखता है. तो हम मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि हमें मुझे कई बार बोलते हैं लोग कि हमारा नीलगाय ने हमारा खेत खा लिया, जंगली सुअर आके हमारा खेत खा गए. बट एक जगह से मुझे ऐसा पता चला कि नहीं मैडम, पहले तो खाते थे बट अभी यहाँ पे लेपर्ड ने केव बना लिया है हमारे खेतों के पास में, अभी से जंगली सुअरों का आना कम हो गया है. तो ये हम देख सकते हैं कि ना ही सिर्फ इकोसिस्टम के लिए बट ये एक हमारे लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीव है क्योंकि ये पूरा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बनाए रखता है लेपर्ड.
0: ओके. और तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी से मैम संभावित चुनौतियां क्या आ सकती है और इसके लिए क्या तैयारी है?
1: बिल्कुल. तो तेंदुओं की संख्या जितनी बढ़ रही है हम देख रहे हैं दुगनी हो रही है 4 सालों में, बट उतना वन क्षेत्र हमारा नहीं बढ़ रहा है इसलिए उनको जगह की कमी महसूस होती है, शिकार की, पानी की ये कमी महसूस हो सकती है. और ये कमी महसूस ना हो इसके लिए हम तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो प्रयास कामयाब होने के बाद भी लेपर्ड जंगल के बाहर आ सकते हैं. और इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वो गांव या आबादी क्षेत्र में आते हैं और वहां पे फिर मवेशियों का या फिर कुत्तों का ऐसे शिकार हो जाता है और उससे भारी नुकसान हो जाता है. कई बार हम सुनते हैं कि जनहानि भी होती है.
0: यानी कि
1: बिल्कुल
0: यानी कि जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी जो है तेंदुए कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे और प्रकृति का जो संतुलन है वो भी बना रहेगा मैम.
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट.
0: और ये जो तेंदुआ है ना मैम, बड़ा ही जो एक शक्ति के साथ धैर्य और एक तरह से इससे संतुलन बना रहेगा और प्रकृति के इस जो अद्भुत जो ये जो प्रहरी है ना, इसको बचाना मैम बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी और आप वो जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं मैम.
1: बिल्कुल बिल्कुल. ये वन्य जीव और जो हमारी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, शाश्वत जीवन शैली हम जो आज बोलते हैं उसमें वन्य जीवों का भी उतना ही धरती पर अधिकार है जितना मानव का.
0: बिल्कुल
1: और
0: मैम.
1: अगर उनके लिए एक कल है तो ही हम कल बच सकते हैं, ये मैं मानती हूँ.
0: बिल्कुल मैम. और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा तभी ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं जंगल सुरक्षित रहेंगे और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना मैम वो बैलेंस रहेगा.
1: करेक्ट करेक्ट. बिल्कुल सही.
0: बिल्कुल. और यही हम कामना करते हैं मैम. और आपसे बात करके जानकारियां लेके बहुत ही हमको जो है अच्छा लगा. और ये तो बहुत ही अच्छा लगा कि जस्ट डबल इनका जो है संख्या हो गई है.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
0: और इसमें कहीं ना कहीं आपका भी बहुत योगदान रहा होगा मैम. और नमस्कार कार्यक्रम में हम जानकारियां तो देते ही हैं मैम. ये म्यूजिकल प्रोग्राम भी हम म्यूजिकल ट्रैक भी इसमें प्ले करते हैं तो अगला जो ट्रैक है हम आपकी पसंद का जरूर बजवाना चाहेंगे मैम.
1: बिल्कुल.
0: तो कोई भी एक भी आपकी पसंद का एक गाना
1: आप वो बजा दीजिए. हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गजल.
0: वाह, आपका जो पसंद का गाना है वो भी एकदम नेचर से रिलेटेड है. मैम हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए. थैंक यू.
0: थैंक यू मैम.

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में वक्त हो चला है शुक्रवार की किताब खास किताब का सेगमेंट। हम आपके सामने आज शुरू किताब लेकर आए हैं, वो है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। जी हाँ श्रोताओं, ये एक उपन्यास नहीं है बल्कि स्मृति, इतिहास, संस्कृति और मानवीय नियति का एक विराट आख्यान है। गैब्रियल गार्सिया मार्केविज ने इस कृति को लिखा था। इस कृति के माध्यम से एक ऐसे संसार की उन्होंने रचना की है जहां यथार्थ और कल्पना एक दूसरे में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि दोनों के बीच की जो रेखा है, लाइन है, वो धुंधली पड़ जाती है। उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें जो इंगित हुआ है थ्रू आउट, वो है एकांत, सॉलिट्यूड। यहाँ एकांत केवल आपका फिजिकल अकेलापन नहीं है बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक दूरी का भी ये एक संकेत है। बुएंदिया परिवार का इसमें प्रत्येक सदस्य दर्शाया गया है किसी न किसी रूप में अलगाव का अनुभव करता हुआ। वे प्रेम करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, समाज में रहते हैं, फिर भी भीतर से अकेले रह जाते हैं। अब इसके माध्यम से गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने एक प्रश्न उठाया है कि क्या मनुष्य जो है वो वास्तव में कभी अपने अकेलेपन से मुक्त हो सकता है। इस उपन्यास में जो समय है वो सीधी रेखा में नहीं चलता बल्कि एक वृत्त की तरह घूमता रहता है। घटनाएं, नाम, उसका स्वभाव, उनकी त्रुटियां जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती हैं, रिपीट की जाती हैं। इससे ये थॉट उभर के आता है कि इतिहास जो है वो स्वयं को दोहराता है और मनुष्य हमेशा अपने अतीत से सीखने में असफल रह जाता है। और ये जो उनका नज़रिया है आधुनिक इतिहास और समाज की गहरी आलोचना भी करता है। इसमें मैजिकल रियलिज्म का एक खास प्रभाव देखने को मिलता है। मार्केज की इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने मैजिकल रियलिज्म का

जो है एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। चमत्कारी घटनाएं इसमें कहानी में इतनी सहजता से आती हैं कि वे अस्वाभाविक नहीं लगती हैं आपको। ये शैली लैटिन अमेरिकी समाज की उस सांस्कृतिक चेतना को व्यक्त करती है जहाँ लोक कथाएं, मिथक, आस्थाएं और दैनिक जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैकांडो इसमें एक कैरेक्टर है जो कि केवल काल्पनिक एक जगह है जो कि काल्पनिक नगर नहीं होते हुए भी बल्कि एक संपूर्ण लैटिन अमेरिका का प्रतीक है। उपन्यास में सत्ता संघर्ष, गृह युद्ध, विदेशी कंपनियों का हस्तक्षेप और आम जनता का जो शोषण है वो दिखाया गया है। लेखक इसमें संकेत देता है कि राजनीतिक शक्तियाँ अक्सर इतिहास को अपने अनुसार लिखती हैं जबकि जो आम लोग हैं उनकी पीड़ा भुला दी जाती है। इसमें स्मृति का एक विशेष महत्व भी दर्शाया गया है। जब लोग अपने अतीत को भूलने लगते हैं तब उनकी पहचान भी कमजोर होने लगती है। लेखक उससे ये संदेश देते हैं कि किसी समाज की संस्कृति और अस्तित्व की उसकी स्मृतियां जो हैं उसी से निर्मित होती हैं। हालांकि कहानी का जो केंद्र है वो एक बुएंदिया परिवार है लेकिन परिवार को संभालने और उसकी निरंतरता बनाए रखने में स्त्री पात्रों की भूमिका जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उर्सुला इसका जो एक कैरेक्टर है वो धैर्य, दूरदृष्टि और संघर्ष का प्रतीक है। कई आलोचक ये भी मानते हैं कि जहाँ पुरुष पात्र अक्सर भ्रम और महत्वाकांक्षा में उलझे रहते हैं वहीं स्त्रियाँ जो हैं इस उपन्यास की वो यथार्थ से जुड़ी हुई है, रियलिटी से जुड़ी हुई है। इस कृति की सबसे बड़ी चुनौती इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही है और इस उपन्यास ने विश्व साहित्य में एक मील का पत्थर जोड़ दिया था। इसे न केवल लैटिन अमेरिकी साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाई गई बल्कि कथात्मक शिल्प, समय की अवधारणा और यथार्थ की प्रस्तुति को भी नए आयाम दिए और इसी साहित्यिक योगदान के कारण गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को 1982 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से भी सम्मानित किया गया था।

0: श्रोताओं, आज जयंती है माधव राव सप्रे की, जो हिंदी के साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। वे हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कार्य के लिए उपयुक्त अनेक प्रतिभाओं को परख कर उनका उन्नयन भी किया, यानी कि दूसरों का भी भला किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अग्रणी भूमिका थी। प्रखर संपादक के रूप में लोक प्रहरी और सुधीर साहित्यकार के रूप में उनकी भूमिका एक लोक शिक्षक की रही श्रोताओं। इसके साथ साथ कोशकार और अनुवादक के रूप में भी उन्होंने हिंदी भाषा को बहुत ही समृद्ध किया श्रोताओं। सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है, यानी कि उनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सप्रे जी ने मौलिक लेखन के साथ साथ विख्यात संत समर्थ रामदास के मूलतः मराठी में रचित दासबोध, लोकमान्य तिलक द्वारा रचित गीता रहस्य और इसी के साथ चिंतामणि विनायक वैद्य द्वारा रचित महाभारत मीमांसा जैसे ग्रंथ रत्नों के अतिरिक्त दत्त भार्गव, श्री रामचरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथों और पुस्तकों का हिंदी में बखूबी अनुवाद किया श्रोताओं।
1: और श्रोताओं, आज श्री सुदर्शन अग्रवाल की भी जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 1971 में राज्यसभा सचिवालय में कार्यभार संभाला था और 1981 तक आते आते उन्होंने विभिन्न पदों पर अपनी भूमिकाएं दी थी, अपनी सेवाएं निभाई थी। इसके बाद उन्हें राज्यसभा के महासचिव के सर्वोच्च पद पर पदोन्नत भी किया गया था। 12 वर्षों तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया और राज्यसभा से सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्त किया गया था। एक भारतीय सिविल सेवक श्री सुदर्शन अग्रवाल ने 2007 से 2008 तक सिक्किम की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था।

दोस्तों वक्त है फीफा की हाइलाइट्स जानने का। इस बार का जो फीफा विश्व कप है वो इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप है। पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 3 देशों में हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको द्वारा, वो भी संयुक्त रूप से। जो अभी की हाइलाइट है वो फीफा विश्व कप 2026 मैच से है, मेजबान देश मेक्सिको से है, जिसने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ कोरिया को 1-0 से हरा कर न केवल मैच जीता बल्कि नॉकआउट चरण में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच का एकमात्र गोल जो लगाया वो लुइस रोमो ने दूसरे हाफ में किया था और गोलकीपर राउल रेंगर की बेहतरीन बचाव ने मेक्सिको की जीत

0: और श्रोताओं इसी के साथ आज का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए इजाजत नेहा को और
1: नूतन सोनी को।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम
1: नमस्कार
0: आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सवेरे के ठीक 10 बजे हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो डॉक्टर

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, फार लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: आकाशवाणी के खजाने में खूबसूरत हर जमाने के गीत, आकाशवाणी के प्रोग्राम पेश करने वालों की बेमिसाल आवाजें।
8: नमस्कार।
9: दिल ये चाहे हवाओं से खेलो,
8: अपना शहर अपनी शान,
10: मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी।
11: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है,
12: एफएम सन सिटी,
13: जोधपुर एफएम, हार्ट बीट ऑफ जोधपुर,
14: नए अंदाज में।
15: जो दिन भर घर घर में गूंजती है,
16: ट्यून कीजिए एफएम सन।

बहुत बहुत स्वागत दोस्तों 102.1 FM रेडियो सेंसिटी पर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय व्यास हूं, मेरे साथ मेरे साथी राजेश लामरोड और हमारी होस्ट कविता जी। आप हम सब मिलकर के आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुबह सवेरे 10 बज चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने काम पर निकल चुके हैं, ऑफिसेज में बैठ चुके होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो 10 बजे के बाद जिनका समय रहता है तो वो ट्रांजिट में होंगे अभी अपने काम पर, और गाड़ी में हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो घर पे होंगे वो हमारा प्रोग्राम घर पे सुन रहे होंगे। और एक बहुत बड़ा रेडियो का आशिक तबका ऐसा है जो उम्र दराज है, अपने काम से सेवानिवृत्त है, लेकिन जीवन में पूरी तरह से सक्रिय है, और वो रेडियो हमें लगातार हमें सुनता रहता है, और वो तबका है वृद्धजनों का। तो वृद्धजनों के बारे में आज हम बात करेंगे, और वृद्धजनों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो एक जहन में जो आती है चीज़ वो ये है कि ज़िंदगी की एक पुरानी मोटी सी और बड़े काम की किताब है, और इस किताब को रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है।

खास करके हम सब जिनके घरों में बुजुर्ग लोग हैं उनसे संवाद बनाए रखें। वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और उनका मार्गदर्शन काम का होता है। इस वैल्यू को हमें समझना होगा। लेकिन उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और उम्र बढ़ने के साथ जो दिक्कतें या बीमारियां होती है शारीरिक, उसके अतिरिक्त कुछ मानसिक चुनौतियां भी वो झेलते हैं।

0: चुनौतियां भी वो झेलते हैं जैसे भूलना एक चुनौती है या फिर चिड़चिड़ापन है अवसाद या किसी बात को लगातार रिपीट करना तो ये चीज़ें सामान्य हैं या फिर इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है और कुछ ऐसी चीज़ें बेशक होती हैं जिनके लिए हमें डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है तो वृद्धावस्था की जो मानसिक चुनौतियां होती हैं उन पर हम बात करेंगे आज आज विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ में हैं डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर वर्तमान में आप MDM हॉस्पिटल जोधपुर में सेवाएँ दे रहे हैं डॉक्टर अशोक जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में
1: थैंक यू सर
0: सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं और बहुत लंबे समय बाद और शायद हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में पहली बार ही आपका इस अरसे में आना हुआ है बरसों हो चुके हैं इस बीच बहुत सारे नए श्रोता हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं तो एक लंबे अरसे बाद फिर से आकाशवाणी विजिट करना कैसा लग रहा है आपको
1: शायद वापस घर आने जैसा
0: अरे वाह क्या बात है सर आपका अपना घर है और आपका अपने ही घर में आप स्वागत है फिर से हम ये कहेंगे जो नए श्रोता जो आपको नाम से और पद से जानते हैं या फिर कभी काम पड़ा हो तो हॉस्पिटल में आपको बैठे हुए देखते हैं OPD में उनके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा चिकित्सा विज्ञान की कहाँ हुई आपका बचपन कहाँ बीता थोड़ा सा हमें बताइए
1: संजय जी वैसे तो मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ
0: जी
1: मेरी ग्रेजुएशन तमिलनाडु से है पोस्ट ग्रेजुएशन SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से है और उसके बाद में मैंने वृद्धावस्था में सुपर स्पेशलिटी कोर्स किया है KGMC लखनऊ से और पिछले 10 साल से मैं जोधपुर में सेवाएँ दे रहा हूँ MDM हॉस्पिटल में तो मेरा जो विशेष है वो वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य ही है बट अभी मैं मानसिक स्वास्थ्य की सारी बीमारियां चाहे बचपन से हों चाहे युवावस्था में हों चाहे वो वृद्धावस्था में हों लगभग सारी चीज़ों को आज के दिन
0: तो देश के जो प्रमुख प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है वहां आपने पढ़ाई की है
1: यस सर
0: और अगर मैं बात करूँ कि वृद्धावस्था आपका जो कोर सब्जेक्ट रहा है जिस पर आपकी विशेषज्ञता है तो ये विषय आपने क्यों चुना आपने कहीं आसपास देखा होगा कि वृद्ध जन जो होते हैं वो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं हम मानते हैं कि शारीरिक चुनौतियां ही उनको होती है लेकिन मानसिक चुनौतियां भी उनको बहुत सारी होती हैं इसके बारे में हम बहुत सोचते नहीं हैं
1: संजय जी सबसे बड़ी परेशानी तो हमारी है कि जैसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स या अनभिज्ञता है हम बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हैं जैसे हम अपने ही समाज की बात करें तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि सठिया गए हैं भूलना तो नॉर्मल चीज है आजकल थोड़ा चिड़चिड़ापन होने लग गया जो उम्र के साथ में स्वाभाविक है ये चीजों को ढंग से नहीं कर पाते हैं इनमें कुछ आलसी हो गए हैं हर समय दर्द की शिकायत करते रहते हैं ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हकीकत में मानसिक स्वास्थ्य को इंडिकेट करती हैं उसकी तरफ इशारा करती हैं लेकिन हमारी जो समझ है वो बिल्कुल कम है और रही बात मेरे चुनने की तो इंडिया में मानसिक स्वास्थ्य को लेके ही पहली बात तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं फिर जो वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य है उसको लेके बहुत सारा इग्नोरेंस है और इस सब्जेक्ट को चुनने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज जिस कंट्री में हम बैठे हुए हैं हमारे यहाँ लगभग हमारी 8% पॉपुलेशन कहने का मतलब लगभग 100 मिलियन या ये कहो कि 10 करोड़ लोग वृद्धावस्था वाले हैं और जिनके लिए अलग से कोई स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं करता है हम ये सोचते हैं कि जो एडल्ट में या जो यंग में जो एज उम्र में जो बीमारियां हैं वही बीमारियां वृद्धावस्था नहीं वो बिल्कुल अलग हैं उनकी ज़रूरतें बिल्कुल अलग हैं उसके हिसाब से जो व्यवस्थित तरीके से जो चिकित्सा सुविधाएँ नहीं हैं उसके लिए काम करना शायद मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर काम करने का और जो ग्रेटिट्यूड आपको मिलता है इस फील्ड में मुझे लगता है कि दूसरे फिल्म में उतना नहीं मिलता होगा या मुझे लगा कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है
0: बेशक बेशक यानी उन लोगों को सर्व करने का जो एक संतोष होता है और जो आशीर्वाद स्वरूप आपको जो भी शब्द मिलते हैं वो आपका दिन बना देते हैं ये बात तो है सर
1: जी बिल्कुल
0: सबसे बड़ी चीज़ आपने कही कि इन जनरल जो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमारे यहाँ पर बात नहीं होती है और जिस तरह से हमने देखा कि बच्चियों के मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करने में हम लोग हमेशा कतराते रहे हैं या फिर जो बड़े होते बच्चों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम अपने घरों में बात करने में कतराते हैं उसी तरह की झिझक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी क्यों रही है
1: सर प्रॉब्लम ये रही है कि समझ ही नहीं आता है जैसे मैं किसी को कहूँ कि मेरे को टेंशन हो रही है तो टेंशन का मतलब हमारा समाज ये समझता है कि टेंशन का मतलब कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए
0: बिना वजह के
1: टेंशन हो ही नहीं सकती
0: और ये बीमारी हो सकती है ये कोई नहीं
1: समझ पाता है क्योंकि जैसे टेंशन है तो उसकी वजह होनी चाहिए ये जो हमारा मिसकंसेप्शन है जो मिथ

0: है, वही हमें रोक देता है। नहीं, कोई कारण ढूंढो। कोई मुझे कहे कि मेरे छाती में दर्द हो रहा है तो मुझे चेस्ट फिजिशियन की एडवाइस मिल जाएगी, लेकिन मैं कहूँ टेंशन हो रहा है तो मुझे कोई नहीं कहेगा आप जाके डॉक्टर से मिलो, किसी कंसल्टेंट से मिलो, या फिर आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आपकी परेशानी क्या है, ऐसी बात क्या हो रही है। सी, बीमारी की वजह से भी हमें टेंशन हो सकती है, बीमारी की वजह से भी हमें चिड़चिड़ापन हो सकता है, बीमारी की वजह से भी हम भूल सकते हैं चीज़ों को, स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को हम इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि हमने इन चीज़ों को एक दुर्बलता की तरफ ले लिया। एक हमारा समाज ये भी मानता है कि किसी का मानसिक रूप से अस्वस्थ होना उसकी मानसिक दुर्बलता है। नहीं, किसी को हार्ट अटैक आना उसका हार्ट कमजोर है इसको इंडिकेट नहीं करता। वैसे ही मानसिक रूप से किसी का बीमार होना उसके दिमाग की कमजोरी नहीं है। जैसे ही शरीर के बाकी हिस्सों को बीमारियां प्रभावित कर सकती हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी कर सकती हैं। गलती ये हो जाती है कि हम दिमाग की बीमारियों को समझ ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये तो हमारी ओवर थिंकिंग हो गई है, ये ऐसा हो गया है, या स्ट्रेस की वजह से हो गया है, या घर में कुछ कमी हो गई, या कुछ एडवर्स सिचुएशंस घर में हो गई, तो इस वजह से हम उस बारे में कभी खोल ही नहीं पाए। अच्छा, एक मैं मेरे जीवन का शायद सबसे बड़ा जो उलटफेर कहूँगा वो कोविड कहूँगा। कोविड के बाद में लोगों ने बहुत चीज़ों को समझना शुरू किया, बहुत लोग आगे आए। जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक लेट स्टेज के अंदर हमारे पास में आते थे, अस्पताल में आते थे, उसकी बजाय आज बहुत अर्ली स्टेज में लोग आते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, बट उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा सोसाइटी का तबका है जो अभी भी आने से हिचक रहा है। उनको लगता है कि मैं पागल थोड़ी हो गया हूं। पागलपन होना मानसिक बीमारी है, लेकिन वो जस्ट 1% है। इसके अलावा 99% और भी बीमारियां हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो पागलपन नहीं है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही सर कि हमारे भीतर एक हिचक होती है, हम इसे कमज़ोरी मान लेते हैं कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर न समझ ली जाएं, कि अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को डिस्कस करने डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा ये माना जाता है कि कोई तकलीफ होने पर महिलाएं तो रो देती है, लेकिन पुरुषों के लिए आंसू बहाना सार्वजनिक स्थलों पर ये कमज़ोरी की निशानी माना जाता है। तो अगर पुरुष रो दें तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी उनकी।
0: एग्जैक्टली,
1: चीज़ों को एक्सेप्ट करना, जैसी हैं वैसी चीज़ें। और अगर पुरुष या कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरी जाहिर करता है कि मैं इस क्षण में या इन स्थितियों को झेलने में सक्षम नहीं हूं, मुझे कहीं ना कहीं प्रेशर महसूस हो रहा है, तो शायद घर वाले या उसके मित्र भी सहयोग ही करेंगे, न कि उसको ताने मारेंगे कि यार तू तो बिल्कुल जो है वो उस तरह से हो गया है, मतलब जैसा हम लोग कहते हैं।
0: मुझे लगता है मानसिक स्वास्थ्य को हम इसलिए अवेल नहीं कर पाते हैं कि हम पहले खुद को नहीं समझा पाते हैं कि मुझे जरूरत है।
1: व्यक्ति खुद से भी डिनायल मोड में रहता है।
0: पहले हम ये सोचते हैं मैं कवर कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। नहीं, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको जो रेमेडी है वो लेनी ही पड़ती है। तो आदमी खुद से जो हिचक है, उस हिचक की वजह से ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और उस वजह से वो अपनी परेशानी को बता नहीं पाता है, और वैसे जैसे जैसे परेशानी बढ़ती जाती है उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस उससे जुड़े हुए और सामने आने लग जाते हैं।
1: बिल्कुल, और बुजुर्ग लोगों के बारे में ये बात और भी सच है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो बता नहीं पाते हैं, और उनके घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि मानसिक चुनौतियों को वो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से यही अवेयरनेस हम फैलाने की कोशिश करेंगे कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको किसी भी प्रकार की मानसिक तकलीफ है तो कृपया उसे बढ़ती उम्र का एक सामान्य लक्षण न मानते हुए उसे बीमारी कुट की तरह ट्रीट करें और किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। उसके बाद भले ही विशेषज्ञ कहें कि कोई बात नहीं, ये सामान्य सी ही बात है, लेकिन उस बात को रूल आउट करने के लिए आप अपने स्तर पर कोशिश न करके और किसी विशेषज्ञ को ये कहने दें। और तमाम जो हमारे दोस्त हैं आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें भी हम ये गुजारिश कहेंगे कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या आप स्वयं सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उस दहलीज पर हैं जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, तो आप अपनी कोई भी परेशानी, खास करके मानसिक परेशानी को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, और परामर्श ले सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमारे जो नंबर्स हैं 9413 9413 29359, ये नंबर है, हर बार की तरह हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने सवालों और जिज्ञासाओं को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। विशेषज्ञ मेहमान डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। और इस प्रोग्राम की रिवायत है सर कि हम अपने दोस्तों को गाना सुनवाते हैं विशेषज्ञ मेहमान की पसंद का, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आप गाने वगैरह सुनते हैं, मतलब ऑफ एंड ऑन, कभी कभार?
0: ऑफनली,
1: बिल्कुल। तो कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे हमारे दोस्तों को?
0: मेरा सबसे पहला गाना जो मैं सुनना चाहूँगा, जिंदगी की यही रीत है।
1: बिल्कुल, क्या बात है, फिलोसफिकल थोड़ा सा इसमें मैसेज है, और जीवन के बारे में, जीवन के दर्शन के बारे में बहुत सारे गाने लिखे गए, उनमें से एक ये बहुत खूबसूरत गाना है और इस गाने को लेकर के हमारी होस्ट कविता जी तैयार हैं।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: स्वागत दोस्तों 102.1 FM रेडियो सन सिटी हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। आज विशेषज्ञ अतिथि हैं डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, MDM हॉस्पिटल में आप वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। और हम अपने दोस्तों से यही इल्तिजा कर रहे थे कि अपने घर में बड़े बुजुर्ग के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर आप कोई जिज्ञासा या सवाल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9413329359 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। और ये एक जिज्ञासा की है, हमारे साथी हैं कैलाश सोलंकी घंटाघर जोधपुर से पूछते हैं कि मेरे मदर की उम्र 80 साल की है और पुरानी बातें बार बार वो दोहराते रहते हैं, तो ये सामान्य है या इस परिस्थिति में इनको क्या करना चाहिए?
5: कैलाश जी, आपका जो सवाल है वो मेरे विचार से लगभग 30% 80 वर्ष के लोग हैं या उनसे उम्र के ज़्यादा लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है
4: जी।
5: ये मोटा मोटा रूप में देखें तो एक डिमेंशिया करके बीमारी होती है जिसमें आदमी भूल जाता है, थोड़ी देर बाद में उनको याद नहीं रहता है कि ये चीज़ मैंने पूछा या नहीं पूछा, ये घटना हुई कि नहीं हुई। हो सकता है कि आपको याददाश्त जाने की बात सुन के थोड़ा अजीब लगे कि उनको तो 30-40 साल पुरानी बातें याद हैं, 50 साल पुरानी बातें याद हैं, लेकिन अमूमन इस बीमारी में होता क्या है कि अभी की बातें, आधे घंटे की बातें, 4 घंटे पहले की बातें, 2 दिन पहले की बातें आदमी भूलता है, पुरानी बातें फिर भी याद वो उसमें रहती हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार डिमेंशिया के लिए आप हमारे पास कभी भी MDM में OPD दिवस पर आ सकते हैं, उसका हम इवैल्यूएट करके और एक जो इसका आउटकम होना चाहिए या जो निदान होना चाहिए वो कर सकते हैं। और इस बीमारी के बारे में सबसे खास बात यह है कि जितना जल्दी आप पहचान करते हैं उतना ही अच्छा आउटकम आता है। यदि हम जितना देर करते जाते हैं उसके बाद में जो चीज़ें डैमेज हो चुकी होती हैं उनको वापस करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपको टाइम मिले तब आएँ आप। और वैसे ही ये बीमारी लाइलाज तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा आउटकम नहीं होता है यदि समय के साथ में ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है तो।
4: बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके या हैक्स होते हैं, आजकल की भाषा में कहें हैक्स होते हैं, जिससे भूलने को आप कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। जैसे कुछ डायरी जैसा पास रखें या कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी उस रूटीन में जो रोज़ के काम हैं, दवाई लेना वगैरह, उसमें मदद कर सके ताकि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की या दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़े। बिल्कुल सर,
5: यस।
4: तो भूलना जो है ये एक बड़ी चुनौती है सर वृद्धावस्था में, और भूलना ये इतनी बड़ी चुनौती है कि अगर घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं जो अपने बच्चों से या पोते पोतियों से प्रेम करते हैं वो अगर पास में आए और बिल्कुल पोकर फेस्ड हो जाएं वो और उन्हें लगे कि ये कौन आ गया है और आधे घंटे बाद बहुत सारे तरीकों से याद दिलाने पे वो याद आ जाएं, तो इससे बड़ी जो है दुखांति का कोई हो नहीं सकती। मतलब ऐसा लगता है कि वो जो संबंध होता है, कड़ी होती है, वो टूटती जा रही है। ये क्या सामान्य प्रक्रिया है भूलना, और क्या सभी बुजुर्गों में बढ़ती उम्र के साथ में कुछ भूलने की चीज़ें या दिक्कतें हो जाती हैं, या फिर ये व्यक्ति स्पेसिफिक होता है और कुछ लोगों में ही भूलना होता है, बाकी तमाम लोग 100 साल की उम्र में भी अच्छी खासी याददाश्त रखते हैं?
5: भूलना सामान्य प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि हमारा समाज मानता है कि 60 साल के बाद में भूल जाना नॉर्मल है। नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हाँ, ये होता है कि 60 साल के बाद में हमारी जो समझ शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आपकी जो दिन प्रतिदिन की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आप आराम से कर पाते हो, घर वालों को अच्छे से आप पहचान सकते हो, आप अपने काम अच्छे से कर सकते हो। बीमारी का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो दिन प्रतिदिन की काम है वो आपको उसमें

0: असिस्टेंस की चाहिए जरूरत पड़ती है। आप जो अपने निजी लोग हैं उनको पहचानने में दिक्कत महसूस करते हो। एक सबसे कॉमन लक्षण हमारे यहाँ जो देखने को मिलता है, मरीज अपनी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, एक्सेसिव पोसेसिव हो जाता है कि मेरी चीज़ें कहाँ गई, मेरा जूता कहाँ गया, मेरा चप्पल कहाँ गया, मेरे गहने कहाँ गए, मेरे कपड़े कहाँ गए। और कई बार तो जब उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनको लगता है कि उनके घर के किसी सदस्य ने या उनके नेबर ने या विजिटर ने किसने वो चोरी कर लिया है। ये एक खास लक्षण है जो अमूमन डिमेंशिया की तरफ या भूलने की बीमारी की तरफ संकेत देता है और इसमें हमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है। रही बात, काफ़ी लोगों में प्रॉब्लम आती है, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी पे यदि असर डालने लगे तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता है।
1: सर, भूलना जो है एक सामान्य प्रक्रिया भी है, क्योंकि भूलना या चीज़ें जो इरेज होती है हमारी मेमोरी से, वो हमें बहुत सारे ऐसे घाव होते हैं जो कम हरे होते जाने में मदद करते हैं। क्योंकि अब देखिए कि जो ट्रॉमाज होते हैं जीवन में, अगर आप भूलेंगे नहीं तो वो निरंतर आपको परेशान करते रहेंगे। तो भूलना एक सामान्य प्रक्रिया भी है और भूलना एक बीमारी भी है। इन दोनों के बीच की जो थिन लाइन है उसको कैसे हम समझें कि जैसे मान लीजिए बुजुर्ग हैं, वो बाथरूम जा रहे हैं और बाथरूम जाते जाते रास्ते में भूल गए और वो रसोई की तरफ चले गए, तो इतना एक्सट्रीम जो है यही हम भूलना बीमारी में मानेंगे या कुछ बहुत सारी दूसरी सामान्य चीज़ें भी होती हैं?
0: जो भूलने की बीमारियां होती हैं उनमें सबसे कॉमन जो बीमारी होती है अल्जाइमर बीमारी होती है। उसका पहला लक्षण अमूमन नेविगेशनल डिफिकल्टीज होती है, मतलब जहां उसको चलना फिरना होता है रेगुलर वे में दिशा भूल जाना, जैसे बाथरूम जाना है बाथरूम की बजाय रसोई में चले गए, रसोई जाना है बाथरूम चले गए, पड़ोस के घर में जाना था वहां से दो कदम आगे चले गए, या कहीं गार्डन जाके वापस आ रहे थे अपने घर की बजाय किसी दूसरे के घर चले गए या दूसरी दिशा में चले गए। ये सामान्य तो नहीं हो सकता है,
1: ये सामान्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं, मान लीजिए नेविगेशनल उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ठीक हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें जो बहुत सामान्य होती हैं जिनको वो निरंतर भूलते जा रहे हैं।
0: भूलने की जो बीमारी होती है उनमें एक अल्जाइमर जैसे मैंने कहा टाइप है, वैसे दूसरे टाइप्स भी होते हैं जिनमें बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होते हैं। जो आदमी पहले बिल्कुल शांत स्वभाव का रहता था वो चिड़चिड़ापन दिखाने लग जाता है, या उसका रिवर्स, जो जिन्होंने ज़िंदगी भर गुस्सा किया है एकदम एक टाइम के बाद में बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कई बार घर वाले बड़े खुश होते हैं कि इनके व्यवहार में बदलाव हो गया है, लेकिन ये जो व्यवहार में बदलाव है जो एकदम एकाएक जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं माना जाता है, क्योंकि वो भी एक डिमेंशिया का प्रकार होता है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, उसकी तरफ इशारा करने की बात करता है।
1: सर, इसमें क्या होता है, भूलने की जो प्रक्रिया है, सामान्य भूलने की प्रक्रिया और बीमारी में ऐसा क्या हमारे मस्तिष्क में होता है जिसके कारण हम भूलने लगते हैं? क्या कोशिकाएं मरने लगती है इसमें?
0: यस, यही तो बात है जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी इसमें इंटरवेंट करना पड़ता है, क्योंकि डिमेंशिया की बीमारी के अंदर जो सेल्स हैं जिनको मेमोरी स्टोर करने का जो काम होता है वो धीरे धीरे करके टूटने लग जाती हैं और टूटते टूटते वो मरती भी जाती हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, मान लीजिए कि मेरे पास में 100 सेल्स हैं, मैं हर एक साल के अंदर लगभग 60 के बाद में 5% कोशिकाएं खोता रहता हूं, लेकिन जब बात डिमेंशिया की आती है तो वो 15% या 15% से भी ज़्यादा, कहने का मतलब 6-7 साल के अंदर आपकी जो याददाश्त की जो कैपेसिटी है वो लगभग इरेज हो जाती है, जैसे कि आपने सारा का सारा डाटा ही ख़त्म कर दिया है। जैसे मैंने कहा 5% वैसे भी हो रहा है, जो हम आप बात कर रहे थे सामान्य प्रक्रिया में बहुत लिमिटेड है, जिसमें आदमी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ जो डैमेज होता है वो इतना तीव्र होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है और उनकी दिन प्रतिदिन की जो काम है वो प्रभावित होने लग जाते हैं। और यही वो थिन लाइन है जो नॉर्मल एजिंग में और एक पैथोलॉजिकल एजिंग या बीमारी वाला बूढ़ापा और एक नॉर्मल बूढ़ापा।
1: जी, आपने कहा कि कुछ जो मेमोरीज होती हैं वो परमानेंट होती हैं, तो डिमेंशिया में अल्जाइमर्स जो बीमारी होती है उसमें भी कुछ जो मेमोरी होती है वो परमानेंट रहेगी, जैसे हमारी जो कॉग्निटिव भाषा सीखने की बात है, जो भाषाएं हमने सीखी हैं वो हमेशा बनी रहती हैं या वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं?
0: मेमोरी को हम सामान्यतः दो चीज़ों में मानते हैं, एक एपिसोडिक मेमोरी, एक प्रोसीजरल मेमोरी। जो प्रोसीजरल मेमोरी है जो आप काम करते हो, जैसे गाड़ी चलाना हो गया, आपको कुक करना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, या जहाँ पे आपको कोई प्रोसीजर करना होता है, कोई काम करना होता है,
1: स्विमिंग,
0: वो चीज़ें अमूमन बात में जाती हैं। लेकिन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे नाम हो गया किसी का
1: जी,
0: किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो गई, या ये कहो कि जो बिब्लियोग्राफी हम कहते हैं, वो चीज़ें पहले खराब होती हैं और जैसे मैंने कहा प्रोसीजरल मेमोरी बाद में खराब होती है,
1: लेकिन असर उस पर भी होगा।
0: यस
1: डॉक्टर अशोक, हम अब बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि किस तरह से हम मदद कर सकते हैं अपने बुजुर्गों की, लेकिन अब वक्त हो गया एक और गाना सुनने का, आपकी पसंद का। तो वो गाना आपने कौन सा हमें बताया था जो हम अपने दोस्तों को सुनवा रहे हैं?

0: कुछ तो लोग कहेंगे ये गाना शायद आपने बताया था।
1: Yes.
0: बिल्कुल, ये गाना सुनवाते हैं हम, हमारे जो अनाउंसर हैं वो तैयार हैं इस गाने के साथ, और तमाम जो दोस्त हैं हमारे, आप तैयार रहिए हमें सवाल पूछने के लिए 9413329359 पर। डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी हमारे आज के मेहमान, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, तैयार हैं आज हमारे इस प्रोग्राम में आपके साथ बने रहने के लिए।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत बगीचे घर

0: टेरेस या ऑफिस को बनाइए, हरा भरा पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
4: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी साहब का हम स्वागत आज कर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, MDM हॉस्पिटल जोधपुर में आप सेवाएं दे रहे हैं। और सर आपके OPD डेज कब हैं, क्या सारे दिन आप उपलब्ध रहते हैं मरीजों के लिए?
5: मंगलवार एंड गुरुवार।
4: मंगल और गुरुवार को आप के OPD डेज हैं। तो अगर किसी हमारे श्रोता को कुछ पूछना है या कोई मदद चाहिए तो आप से संपर्क कर सकते हैं मंगल और गुरु को। और हमारे एक लिसनर हैं सर, मिस्टर रामनिवास बैरवा जी हैं जोधपुर से, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा सवाल है कि बाथरूम में नल वगैरह होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, लाइट के स्विच बंद कर दिए या नहीं, परंतु बार बार देखने की आदत बन जाती है, तो ये कोई बीमारी है या अगर है तो इसका समाधान बताएं।
5: रामनिवास जी, जिस तरीके से आपने जो लक्षण बताए हैं वो एक बीमारी, जो मानसिक बीमारी है, लगभग 2% जनता को प्रभावित करती है, जिसका नाम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD के रूप में जाना जाता है। इसमें जो रोगी होता है उसको ये पता होता है कि उसने चेक कर लिया है सब कुछ, नल पूरा बंद कर दिया है, हाथ ढंग से धो दिए हैं या दरवाज़ा ठीक से चेक कर लिया है, गैस बंद कर दिया है, स्विच बंद कर दिया है, उसके बावजूद भी उनको शक रहता है कि ये चीज़ें मैंने की कि नहीं की, मुझे वापस जाके चेक करना पड़ेगा। यदि वो चेक नहीं करते हैं तो उनको इतनी घबराहट होती है कि उस घबराहट को ओवरकम करने के लिए उनको लगता है बेटर है कि दोबारा चेक कर लूँ। और ये दोबारा का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो घबराहट है वो एक बार रिलीफ हो जाती है, उसके बाद में फिर उनके दिमाग में विचार आता है कि यार काम ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। और ये जैसे मैंने कहा लगभग 2% जनता को, पुरुष और महिलाएं लगभग बराबर रूप से प्रभावित करती है। और सबसे बुरी बात महिलाओं के बारे में ये आती है कि परिवार के लोग ये समझते हैं कि ये साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती हैं, घर को बड़े सलीके से सजा के रखती हैं और उस तरफ बीमारी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मरीज एक अशांत जीवन जी रहा होता है, परेशान होता रहता है। मतलब हमें कई बार तो ताजुब होता है कि लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल के बाद में OPD में आते हैं कि साहब ये समस्या आ रही है, ये इसका कोई इलाज हो सकता है क्या? ये कॉमन बीमारी है, इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इवन गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर भी कम से कम 5 या 6 दवाइयाँ हैं और जो अच्छे से काम करती हैं। इस बीमारी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार मुश्किल बीमारी है, टाइम अच्छा लेती है, खूब टाइम लग जाता है हमें ठीक करने में, लेकिन ठीक लगभग सबकी हो जाती है।
4: बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है और इसका कोई पॉजिटिव पहलू भी है, आप थोड़ी व्यवस्थित जीवन तो जी लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाई साफ सफाई का ध्यान रख लिया आपने, अपनी हाइजीन का ध्यान रख लिया, तो थोड़ा व्यवस्थित जीवन तो हो ही गया।
5: संजय जी, बीमारी का पॉजिटिव पहलू यह होता है कि उसको जितना जल्दी हटाया जाए उतना ही पॉजिटिव होता जाता है, क्योंकि व्यवस्थित जीवन की जहां तक बात करते हैं, जैसे हम जिस टेबल के आसपास बैठे हैं वहां सब चीजें व्यवस्थित हैं, यदि इन चीजों को व्यवस्थित करने में मुझे 2 मिनट लगे वहां तक ठीक है, यदि इन्हीं चीजों को व्यवस्थित करने में मुझे 2 घंटे लग जाए तो मेरी बाकी चीजें प्रभावित होने लग जाएंगी। हाथ धोने में मुझे 1 मिनट लगे वहां तक ठीक है, यदि मुझे आधा घंटा लगने लग जाए तो मेरी बाकी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। तो व्यवस्थित एक जगह होकर बाकी जगह अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा जाती हैं। तो जो एक हम समरी के रूप में देखें तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव में जाती हैं, एक चीज पॉजिटिव के पीछे 10 चीजें नेगेटिव जाना व्यवस्थित जीवन की बजाय मुझे लगता है वो और परेशानियां खड़ी कर देता है।
4: जोधपुर में सर एक वो जो जैसे पानी जैसे नल आता है तो ओटे धोने की बहुत यहां पर रिवाज सा है, मतलब साफ सफाई के मामले में अव्वल है, हालांकि सड़कों पर तो उतनी साफ सफाई नहीं है, लेकिन घरों में लोग जो है वो अपने चौके चूल्हे को बहुत चाक चौबंद रखना पसंद करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ओके है क्योंकि हमने आसपास देख के ही इसको कल्टीवेट किया आदत को।
5: मानसिक बीमारियों के बारे में एक बात कही जाती है, जब तक आपके जीवन पे कोई नेगेटिव असर नहीं डाले कोई भी लक्षण तो वो बीमारी नहीं है।
4: यस,
5: साफ सफाई मैं भी रखता हूँ, आप भी रखते हैं, और वो बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरी जिंदगी को बहुत सजाते हैं, संवारते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि इनकी वजह से आपके दूसरे डोमेन पे असर आने लग जाए, आपके दूसरे काम प्रभावित होने लग जाए, चाक चौबंद रखना, साफ सफाई रखना बीमारी नहीं है, यदि दूसरी जगह प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो, या जहां एक आवश्यक टाइम से ज्यादा आप खर्च नहीं कर रहे हो तो।
4: बिल्कुल, और हम इस विषय को अब यहीं छोड़ रहे हैं और हमारे एक साथी हैं जो सवाल के जरिए हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप के जरिए, और ये हमारे साथी हैं, बाड़मेर आडेल गांव है, वहाँ से कमरा राम जी सारण है। इन्होंने हमें धन्यवाद दिया है कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना है, अल्जाइमर सुनने में तो

0: अमल लगता है, लेकिन जिसको हो जाता है उसको पता है कि तकलीफ क्या है। जैसे बुजुर्ग लोग ज्ञान के भंडार होते हैं, लेकिन अल्जाइमर के शिकार होने के बाद उनका अनुभव क्षीण हो जाता है, उनकी खुद की दिनचर्या का काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये कहते हैं कि मेरा सवाल ये है संजय जी कि मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, कभी कभार जैसे जाना होता है कहीं उससे आगे चल जाता हूँ, उसके बाद दिमाग में आता है कि जाना जहाँ था वो तो पीछे रह गया है। तो क्या ये मानसिक तकलीफ हो सकती है? कई बार विचारों में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि कहीं रुकना होता है उससे बहुत आगे चले जाते हैं।
1: सरल जी, आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन आप दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप एक काम कर रहे होते हैं उस समय आपका माइंड किसी दूसरी चीज़ों में एक्टिव रहता है, और इस वजह से आप जिस काम के लिए निकले हैं वो काम भूल जाते हैं। ये स्ट्रेस आप कह सकते हो कि शायद आप चीज़ों को ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है कि आपको थोड़ी नींद में परेशानी हो जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को रिटेन करने में परेशानी हो। तो मुझे लगता है कि आप एक बार आके कभी बात करना चाहें तो अच्छी बात है, बट बीमारी जैसा मुझे नहीं लग रहा है इस चीज़ को देख के।
0: और एक अच्छी बात ये भी है सर कि ट्रैक्टर पर जा रहे होते हैं तो ट्रैक्टर पर तो आप मुश्किल से ज़्यादा ज़्यादा 1 किलोमीटर जाएंगे, ये अगर हवाई जहाज पे जाते तो आडेल से अटलांटा भी पहुंच सकते थे, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती।
1: बिल्कुल।
0: ये हमारे एक और लिसनर हैं, ये मिस्टर पीयूष पाणी है, ये पूछते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ सेनाइल सैक्रोपीनिया, एक्सप्लेन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो इस बीमारी को मैं नहीं जानता, लेकिन ये हमारे अवेयर लिसनर है मिस्टर पीयूष पाणी है।
1: पीयूष जी, मुझे लगता है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं।
0: नहीं, ये पूछ रहे हैं सेनाइल सैक्रोपीनिया। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वापस हम चाहेंगे कि आप सवाल के ज़रिए इसे एक्सप्लेन करें, उसके बाद मैं आपके सवाल को ले पाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम एक गाने की तरफ बढ़ते हैं सर, क्योंकि बातचीत करते हुए थोड़ा वक्त हो गया है। तो आपकी ही पसंद का एक और गीत जो हमारे होस्ट लेके तैयार हैं, और हम अपने दोस्तों के साथ ये गाना सुनते हैं। उसके बाद कुछ देर और हम बात करेंगे हमारे घर में अपने बड़े बुजुर्ग जो भूलने की चुनौती से जूझ रहे हैं, उनमें हम अपनी मदद किस प्रकार कर सकते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज विशेष मेहमान हैं डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। हम वृद्धावस्था में मानसिक चुनौतियों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथी हैं मिस्टर देवराज आसेरी, कुलदीप विहार जोधपुर से पूछते हैं। मेरे नज़दीकी रिश्तेदार 65 साल के हैं और पहले वो दिन भर हंसी मजाक करते थे, अब पिछले 2 माह से थोड़े गुमसुम रहते हैं, ये कोई बीमारी हो सकती है?
1: हाँ आसेरी साहब, मुझे लगता है कि जो लक्षण आपने बताया जिसमें दो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो ये है कि जो उनका पहले का जो पर्सनालिटी था वो पूरा चेंज हो गया है, हंसी मजाक से गुमसुम रहना, और दूसरी बात अपने आप में रहना। ये मोटा मोटा देखें तो डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, जो कि इस उम्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। क्योंकि होता क्या है कि डिप्रेशन जो हम जो यंग एज में जो देखते हैं उदासी, यहाँ जो इस उम्र में जो डिप्रेशन प्रेजेंट करेगा वो लक्षणों के साथ में अपने व्यवहार में बदलाव करके अपने आप को मरीज आइसोलेट करने लग जाता है, किससे बातचीत करने में रुचि नहीं रखता है, या कभी कभी आपको रोने जैसा या रोते हुए महसूस भी हो जाते हैं, या फिर जो चीज़ों में वो पहले इंजॉय करते थे, जिन चीज़ों को वो मज़े के साथ जीते थे, वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी से गायब होने लग जाती हैं। अगेन जैसे मैं कहूँगा कि ये लगभग 10% वृद्धावस्था के लोग जो हैं 60 या 65 से ऊपर हैं उन लोगों को प्रभावित करती है, और ये एकदम सामान्य बीमारी है। मुश्किल से 2-3 महीने के अंदर काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, और कुछ महीनों के कोर्स के बाद में दवाई भी बंद की जा सकती है। ये बहुत सामान्य, बहुत कॉमन बीमारी है, और मैं ये कहूँगा कि इतनी ज़्यादा कॉमन है कि मेरे घर में नहीं तो मेरे पड़ोस के घर में पक्का मिल जाएगा, और या ये कहूँ कि हर दूसरे तीसरे घर में ये मिल जाती है। तो इनका जब भी हो सकता है जितना जल्दी हो सकता है इलाज करवाएं, और आराम से ये ठीक होने वाली चीज़ है।
0: सर, जो भूलने की सामान्य प्रवृत्ति है जो बीमारी भी हो सकती है, और अवसाद डिप्रेशन, ये क्या अक्सर वृद्धावस्था में कॉम्बो में आती है, साथ ही होगी ये भी?
1: लगभग 30% लोगों में ये साथ में हो सकती है। कई बार जैसे डिप्रेशन है वो सुडो डिमेंशिया, ये कहो कि छद्म डिमेंशिया के रूप में भी प्रेजेंट करता है, जहां मरीज ये कहता है मुझे कुछ आजकल याद नहीं रहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, जो डिमेंशिया में भी होता है। लेकिन डिमेंशिया वाले मरीज भूलने की समस्या बताते नहीं हैं, वो हम नोटिस करते हैं, घर वाले नोटिस करते हैं, उनके व्यवहार के द्वारा नोटिस होती है, जबकि वही लक्षण जो है डिप्रेशन के अंदर मरीज खुद जाके बताता है मेरे को याद नहीं है, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी पूछेंगे मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, मैं तो ये भूल गया हूँ सारे, मुझे किए हुए बहुत अरसा हो गया है। और ये बहुत अलग सा लक्षण है, लेकिन यहाँ पे भी भूलने वाली बात आती है, लेकिन बीमारी अलग है, इलाज अलग है, और बहुत सामान्य बीमारी है। डिमेंशिया की तुलना में तो मैं कहूँगा कि आपको 1/10 एफर्ट भी नहीं लगता है ठीक करने में।
0: बिल्कुल, तो अवसाद बुढ़ापे में जो है ये काफ़ी कॉमन है, और इसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। भूलने की जो बीमारी है वो वाकई चुनौती प्रस्तुत करती है, कारण ये है कि भूलने की बीमारी प्रोग्रेसिव बीमारी होती है।
1: प्रोग्रेसिव है, और उसमें डैमेज होता रहता है, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, दिमाग में कोई बदलाव नहीं होता है। एक जो सामान्य जो अपने दिमाग में रसायन होते हैं डोपामीन, सीरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन, ये थोड़ी मात्रा में कम हो जाते हैं, उसकी वजह से लक्षण आते हैं, और इनके लिए इतनी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि आप कुछ दिनों में, या कहिए कि कम से कम कुछ हफ्तों में आराम से अच्छे से एक रिकवरी पा लेते हैं।
0: जी, क्या ये बीमारियाँ इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि हम ये कहने की स्थिति में बहुत जल्द पहुंच सकते हैं कि हमारा जो देश है वो अवसादग्रस्त देश हो चुका है, यानी युवाओं से लेकर के बुजुर्गों में इतनी कॉमन हो चुकी है कि लगभग ये बहुत बड़े प्रतिशत को कवर करने लग गया है?
1: जब अवसाद की बात की जाती है तो दुनिया में जितनी डिसेबिलिटी किसी भी बीमारी की वजह से होती है उनमें अवसाद टॉप 2 में है। पहला हार्ट डिजीज है, और हार्ट डिजीज के बाद में सेकंड जो कंडीशन है जो दुनिया के सबसे ज्यादा लॉस करवाता है मेरे काम में, मेरे प्रगति में, मेरे जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसमें सब जो सेकंड नाम आता है वो डिप्रेशन का आता है। और ये भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030-35 तक जाते आते ये इवन जो आपकी हार्ट की बीमारियां हैं उनसे भी आगे जा चुका होगा, या ये कहिए कि टॉप 1 में होगा। तो ये बात जो है ये दुनिया के लिए लागू होती है जिसमें हम भी शामिल हैं।
0: सर, इसमें मरीज की मदद करने के लिए हम क्या करें क्या न करें? भूलना जैसे बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है, तो

0: परिजन हम क्या कर सकते हैं और क्या न करें।
1: डिमेंशिया की बीमारी में मैं अमूमन देखता हूँ कि घर वाले कहते हैं साहब इनको इतनी देर समझाया, इनको इतना बताया, इन्होंने हाँ हूँ कर ली, उसके बावजूद भी 15 मिनट बाद में इन्होंने वही किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्या आती है कि मरीज, जैसे मैंने कहा था कि उनको रिसेंट मेमोरी बिल्कुल भी नहीं होती है, नई चीज़ें वो नहीं सीख पाते हैं या नई चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। तो जो आप कहते हैं समझाते हैं उनको उस समय समझ तो आ जाता है लेकिन उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, और रिटेन नहीं कर पाते हैं तो उसके हिसाब से काम भी नहीं कर पाते हैं। तो उनको समझाने की बजाय आप कुछ करके बताएं। कभी भी इनके साथ में आपको वायलेंस या एग्रेशन, गुस्सा किसी तरीके का करना नहीं है। वो जो गुस्सा है वो एक नेगेटिव रिपरकशंस ला सकता है, कोई बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 1 मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में उनको पता ही नहीं कि आपने कुछ किस बात पे गुस्सा हुए थे। उनको ये रह सकता है कि आप गुस्सा हुए थे लेकिन ये याद नहीं रहेगा टॉपिक क्या था, किस बात पे गुस्सा हुए थे। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करें। दूसरी चीज़ घर वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो डिमेंशिया के रोगी हैं उनके लिए चीज़ों में कम से कम बदलाव करें। वो जिस रूम में रहते थे, जिस रूम में उनकी ज़िंदगी गुजरी है, जिस घर में ज़िंदगी गुजरी है, वहाँ रोकने की कोशिश करें, क्योंकि उनके बहुत सारे काम उस व्यवस्था के हिसाब से चलते रहेंगे जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके ऊपर जो उनका बर्डन है केयर का वो उसे काफी कम हो जाएगा। तो इलाज के साथ साथ में जो घर में हमें जो बदलाव करने होते हैं वो बदलाव नहीं करने होते हैं, क्योंकि जो बदलाव, कई बार जैसे घर वाले मेरे से पूछते हैं कि साहब हम तो जोधपुर में रहते हैं, हम तो यहां रहते हैं, पापा जी को डिमेंशिया की बीमारी होगी या उनको गांव से यहां लेके आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे उनकी बीमारी कम नहीं होने वाली है, उनकी बीमारी बढ़ने वाली है। वो जिस परिस्थिति में रहते हैं वहां पे जो आप सुविधाएं दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें, उससे उनका आउटकम और आपका बर्डन दोनों ही कम होगा और आउटकम अच्छा होगा, उसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर रहेगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर रहेगी।
0: इवन उनके जो रूम में डिजाइन है उसको भी हम जैसे है वैसे ही रहने दें, बेड की जो दिशा वगैरह है वो भी वैसे ही रहने देनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, एक उसमें हमें बदलाव ये करना है तो ये करना है कि रूम जितना क्लीन हो सकता उतना क्लीन रखें। कहने का मतलब फर्श पे चीजें बिखरी हुई नहीं हो, क्योंकि फ्रैक्चर एंड फॉल्स ये भी इस उम्र के अंदर काफी कॉमन चीजें होती हैं। आदमी गिर जाता है, फिसल जाता है, और जैसे वहाँ पे कोई रेलिंग वगैरह जहाँ बना सकते हो, जैसे बाथरूम या बाथरूम के आसपास का एरिया है तो वो असिस्ट करना चाहिए, तो ये चीज़ें असिस्ट करना ठीक रहेगा। बाकी मिनिमम चेंज के साथ में मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप रहेगा।
0: संक्षेप में सर जानना चाहेंगे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हम अलग करके कैसे देखें। हम सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं कि ये तो बुढ़ापा है, अपने आप में बीमारी ही है, बुढ़ापा स्वयं बीमारी है तो बाकी बीमारियाँ उसी से जुड़ी हुई हैं।
1: वृद्धावस्था में जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं उनमें सबसे बड़ा कारण शारीरिक बीमारियाँ भी हैं। बहुत सारी शारीरिक कंडीशन ऐसी होती हैं या इवन जो उनके लिए दवाइयां यूज होती हैं उनकी वजह से मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। तो मानसिक बीमारियों और शारीरिक बीमारियों को हम अलग करके नहीं देख सकते हैं, दोनों साथ में हैं, लेकिन दोनों का जो निदान होता है अलग अलग होता है। और जैसे साइकेट्रिक कंडीशन कोई आ गई उसमें हम मानसिक बीमारी जो उनकी शारीरिक बीमारी थी उसकी दवाइयों में बदलाव करके या उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके भी शारीरिक बीमारी का निदान कर सकते हैं बिना कोई मानसिक बीमारी की दवाई दिए हुए।
0: बिल्कुल सर, और कुछ हमारे लिसनर्स लगातार हमें सवाल पूछ रहे हैं, मैं चाहूँगा संक्षेप में आप उनके सवालों के उत्तर दें। ये पूछते हैं अब्दुल हमीद छिपा साहब है, बीमारी में डॉक्टर का परामर्श जरूरी है मगर संगीत से मरीज को इसमें कितना फायदा होता है, क्योंकि ये काम हमारा रेडियो सेंसिटिव बहुत अच्छे से करता है।
1: जो संगीत का कंट्रीब्यूशन है मुझे लगता है कि इसमें हम जब ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं तो म्यूजिक थेरेपी करके हम भी यूज़ करते हैं, और स्पेशली जो डिमेंशिया के मरीज हैं जो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, स्पेशली जो सॉफ्ट म्यूजिक होता है जिसके अंदर वर्ड्स कम से कम हों और जो सिर्फ संगीत रहे वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
0: बिल्कुल सर, और एक लिसनर हमारे और हैं, विजय राजदेव जी हैं, और ये पूछते हैं इंदौर से, मेरे परिवार में कोई गंभीर घटना होने के कारण मेरा सारा दिन उस घटना को सोचते सोचते निकल रहा है, कहीं मन नहीं लगता, इसके लिए क्या करना चाहिए। परिवार में कोई ट्रॉमा या दिक्कत हो जाती है तो उसी में लगातार वो दिमाग में।
1: छिपा साहब, जब तक उस ट्रोमा को आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं मुझे लगता है निकलना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहला स्टेप आपको करना है अपनी लाइफ के अंदर न्यू इंटरेस्ट ढूंढें, नई चीज़ें करने की कोशिश करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जो चीज़ हुई है उसको मैं ये कहूँगा कि जो भूलने की आप कोशिश कर रहे हैं वो आप बंद कर दें, क्योंकि भूलने की कोशिश ही इस चीज़ से निकलने के लिए आपको रोकने का सबसे बड़ा काम कर रही है।
0: बिल्कुल, और पीयूष पाणी साहब का वापस मैसेज आया है, इन्होंने एक्चुअली जो पूछा है उसी को एक्सप्लेन किया है। जनरल वीकनेस ऑफ मसल्स ऑफ बॉडी मसल्स बिकम थिक इन थिकनेस, सेनाइल सैक्रोपीनिया। तो ये चूंकि आज हमारी बातचीत का विषय नहीं है इसलिए इस पर हम नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही इन्होंने एक और सवाल ऐड किया है कि कैसे मोटर न्यूरॉन

0: डिजीज को एल्डरली लोगों में ट्रीट किया जाए, ये पूछना चाह रहे हैं। इसी के जरिए इनके जो घर में राधिका बोहरा है, ये पूछना चाह रही है।
1: मोटर न्यूरॉन डिजीज का आज के दिन वर्तमान में कोई खास इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ बहुत अनकॉमन है, लगभग 10 लाख में 2 या 3 लोगों को होती हैं, और वर्तमान में उनको जो भी सिम्टोमेटिक इलाज हो सकता है इसके लिए कोई दवाई, एक राइलोजोल करके दवाई है, वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, और दूसरी कोई दवाइयाँ नहीं है।
0: जी डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, इससे पहले कि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें, जाते जाते इस प्रोग्राम में हमारे लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
1: मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मेरा ये कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपने सामर्थ्य को, अपनी कैपेसिटी को समझें। हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, कोई डाउट नहीं है। उसमें से आप जैसे गिलास आधा भरा हुआ आधा खाली वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें जो गिलास भरा हुआ है उसको देखें, खाली वाला पार्ट को छोड़ दें, क्योंकि जो चीज़ें आप अपने दिमाग में लेके चलते हैं वही आपके व्यवहार में, वही आपकी कार्यकुशलता में, वही आपकी प्रगति के अंदर क्या कहते हैं
0: कंट्रीब्यूट करती है।
1: तो चीज़ों को पॉजिटिव रखें, जहां हो सकता है लोगों से सपोर्ट की जहां ज़रूरत पड़ती है वहां मांगें, बेहिचक मांगें, और जो समस्या आती है उसके लिए खुलकर सामने आए, क्योंकि लेट्स टॉक अपनी बीमारी के बारे में। जितना आप इनिशिएट जल्दी से इनिशिएट करते हैं उतना ही जल्दी उसका आप निदान कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे इस प्रोग्राम में आए और पूरे एक घंटे हमारे और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
0: और 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर इस प्रोग्राम में यानी हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। इस समय दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरी, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना FM Sun City।

नमस्कार श्रोताओं, शुरू हो चुका है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम

जोधपुर इन्फोटेनिया और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं कविता सांखला। एक बार फिर से स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, आज का यह अगला एक घंटा हम उस ऐतिहासिक शहर के नाम पर करने वाले हैं जहां की हवा में ही अपनापन है, गलियों में इतिहास मुस्कुराता है और जहां के लोगों की बोली में मिश्री घुली होती है। जी हां, आज हम सैर करेंगे थार मरुस्थल के प्रवेश द्वार हमारे अपने जोधपुर शहर की, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही जोधपुर इन्फोटेनिया है तो और किसी शहर की बात हम कर कैसे सकते हैं। तो इस नीले शहर की रंगीन गलियों में हम कदम रखेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

श्रोताओं, राजस्थान के अनेकों शहर और उन अनेकों शहर में शहर है हमारा जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर को पूरी दुनिया ब्लू सिटी यानी नीले शहर के नाम से जानती है। लेकिन क्या कभी ये आपने सोचा है कि सिर्फ नीला ही रंग क्यों, कोई और रंग क्यों नहीं, किसी और रंग से क्यों नहीं रंगा गया हमारे जोधपुर को? सोच कर देखिए, कुछ तो आंसर आएगा आपके दिमाग में।

जी हाँ श्रोताओ, सिर्फ नीला रंग ही क्यों चुना, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण है। जोधपुर में सूरज देवता साल भर मेहरबान रहते हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। और पुराना इतिहास कहता है कि यहाँ के बुजुर्गों ने गर्मी से बचने के लिए अपने घरों पर चूने के साथ नील मिलाना शुरू कर दिया, और उस जो चूने में नील मिलाकर जो रंग तैयार हुआ था उसके जरिए उन्होंने अपने घरों को पोतना शुरू कर दिया। और श्रोताओं, दिलचस्प बात यह है कि जो नीला रंग है वो सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे घर के अंदर से ठंडक बनी रहती है, और साथ ही इस मिश्रण से जो दीमक और मच्छरों का खौफ होता है ना, वो भी नहीं रहता था। यानी जो आज पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत नजारा बन चुका है, वो असल में यहाँ के पुरखों की गजब की समझदारी और आर्किटेक्चरल साइंस का प्रतीक था। तो चलिए इसी खूबसूरत नीले शहर के रंगीन गलियों को घूमकर महसूस कीजिए और सफर में आगे बढ़ते हैं इस

0: का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने अपने पसंदीदा कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया में। और हम बात कर रहे हैं हमारे ही शहर जोधपुर की, जो कि अपनी भव्य ऐतिहासिक महलों, किलों और अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन श्रोताओं, क्या आप जानते हैं वर्षों पूर्व जोधपुर शहर के साथ एक विशेष विशेषण जोड़ा गया था? क्या ये कि गुलाबी नगरी अगर जयपुर को बोला जा सकता है, झीलों की नगरी उदयपुर को बोला जा सकता है, तो जोधपुर को भी तो एक नाम दिया जाना चाहिए इसी तरह से। जी हाँ, ये नाम तभी से जोधपुर को सूर्य नगरी दिया जाने लगा। यह विशेषण श्रोताओं इसलिए नहीं जोड़ा गया कि यहाँ के शासक वर्ग सूर्यवंशी थे, तो क्यों कहा गया इसे सूर्य नगरी? इसका अगर सटीक उत्तर दिया जाए तो यहाँ के भौगोलिक प्रमाणों का सहारा लेना पड़ेगा। श्रोताओं, किसी भी स्थान की जो जलवायु है सभी तत्वों में अधिक सूर्य के तापक्रम पर निर्भर करती है, और सूर्य तापमान से ही प्रकाश और प्रकाश जीवन चक्र को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि श्रोताओं, वर्षा, आर्द्रता, गर्म हवाओं का चलना, ये सभी सूर्य पर ही निर्भर करता है। जिस स्थान पर सूर्य ताप अधिक और अधिक समय तक उपलब्ध होगा, वहां संभवतः जलवायु जो है वो शुष्क, कम आर्द्रता वाली और साथ ही गर्म हवाओं के चलने की गति भी यहाँ तेज होगी। यदि इन सभी को देखा जाए तो इस हमारे शहर जोधपुर के भौगोलिक तत्वों का विश्लेषण इन सभी पर किया जाए तो इस आधार पर हम ये प्रमाणित कर सकते हैं, या फिर ये प्रमाणित किया जा सकता है कि इस नगरी के साथ जुड़ा हुआ विशेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित है। कुछ और भी कारण हम जोधपुर के सूर्य नगरी होने पर जानेंगे, लेकिन सुनते हैं पहले ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित जोधपुर शहर की, और हम बात कर रहे थे गाने से, गाना सुनने से पहले, जोधपुर शहर को सूर्य नगरी क्यों कहा जा रहा है। तो श्रोताओं, मौसम वैज्ञानिकों ने भी सोलर रेडिएशन पर जो आंकड़े एकत्रित किए और उनका विश्लेषण, और साथ ही भारत के प्रमुख नगरों का सोलर रेडिएशन का तुलनात्मक अध्ययन किया, तो भारत के जो

नगरों का सोलर रेडिएशन है उनका जो कुल हॉरिजॉन्टल भूतल चमक का प्रतिदिन का जो औसत है वो सभी नगरों से अधिक जोधपुर का है, वो है 6.0। जी हाँ श्रोताओं, मई जून माह में सबसे अधिक मई में 7.4 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर और साथ ही सबसे कम यानी दिसंबर में 4.5 जो कुल हॉरिजॉन्टल भूतल चमक है वो आंकी गई है। साथ ही उपलब्ध जो सनशाइन है, जो सूरज देवता हम पर मेहरबानी करते हैं, ये सनशाइन के तत्वों के अध्ययन से भी ये ज्ञात हुआ है कि जोधपुर शहर का जो सनशाइन है वो भारत के अन्य शहरों की तुलना में अधिक पाया गया है। जी हाँ श्रोताओं, थार रेगिस्तान के करीब स्थित होने के कारण भी पूरे साल जो सूरज देवता है वो तेज और चमकदार धूप बरसाते हैं हमारे शहर पर। और साथ ही कुल औसत घंटे अगर सूर्य चमक देखी जाए तो वो है 8.5 घंटे, यानी कि दिन भर में लगभग 8.5 घंटे सूर्य की किरणें जोधपुर शहर पर बरसती है, जो कि भारत के अन्य शहरों की तुलना में सबसे अधिक है। दोनों तथ्यों के कारणों से यहाँ पर तापमान भी अधिक पाया जाता है श्रोताओं। जो जोधपुर का अधिकतम तापमान है वो 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा की गति भी यहाँ पर बहुत तेज रहती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत जरूर सुना जाए।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया में, जो कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के FM सनसिटी चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं हमारे जोधपुर शहर को सूर्य नगरी क्यों कहा जाता है इस पर। तो श्रोताओं, जो हवा का वेग है वो भी प्रभावित करता है हमारे जोधपुर के तापमान को, और इसी कारण से भी जोधपुर को सूर्य नगरी नाम दिया गया है। जी हाँ श्रोताओं, जो गर्मी का मौसम है उस समय जोधपुर में जो हवा के बहने की रफ्तार है वो लगभग 14.2 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, और प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है हमारे पास वो है सोलर रेडिएशन, सनशाइन और तेज वायु का बहाव। तो ये सभी हवा में पाई जाने वाली आर्द्रता को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि जो नमी है हवा में पाई जाती है उस पर भी जो ये सोलर रेडिएशन है, ये जो सनशाइन है वो इफेक्ट डालती है। श्रोताओं, ये जो आर्द्रता है वो इस प्रकार अंकित की गई है कि यहाँ पर अंकित की गई जो ये आर्द्रता है इसका प्रतिशत अंकित किया गया है, जो कि अप्रैल माह में अंकित किया गया है, वो इस प्रकार है कि सुबह 8:30 बजे तक जो ये आर्द्रता है वो 31% तक रहती है, और दोपहर आते आते यह प्रतिशत घटकर 14% तक पहुंच जाती है। तो इन सभी तत्वों के अतिरिक्त यहाँ पर हमारे यहाँ वर्ष भर में आकाश में बादल भी केवल कुछ ही दिनों तक छाए रहते हैं, मतलब मान लीजिए वो जो गणना है वो लगभग 18 से 20 दिन की है, मात्र 18 से 20 दिन तक ही ये बादल हमारे यहाँ बारिश करते हैं। इस कारण वर्षा का औसत भी लगभग 360 से 370 mm ही रहता है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही हमारे शहर को नाम दिया गया सूर्य नगरी, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक बैठता है।

चलिए श्रोताओं, अब बात करते हैं जोधपुर तब कैसा था और अब कैसा है। जी श्रोताओं, तब जोधपुर जोधपुर ही था, विशुद्ध, मौलिक और अनएडल्ट्रेटेड। उसकी रग रग मारवाड़ के जीवन रस से सिक्त थी और थी उसकी अपनी एक निराली पहचान। चुस्त ब्रिचेस, जिसे आज ब्रिचेस कहते हैं, साथ ही कड़क कॉलर वाला बंद गले का कोट और बांके पेच वाला टिपन टीप।

केसरिया साफा, जिसके पीछे लहराता हुआ जांग स्पर्शी कड़क छेड़ा, उसकी तेजस्विता का उद्घोषक और उसकी सामंती शान का परिचायक था। आज ब्रिजेस को युवा साथी धारण करके उसके अस्तित्व को सुरक्षित रखे हुए हो, लेकिन विदेशों में यह जोधपुर का नाम रोशन कर रहा है और जोधपुरी ब्रिजेस के नाम से पहचाना जाने लगा है। और अगर इधर बंद गले का कोट भी मारवाड़ की सीमा को पार करके दिल्ली तक जा पहुंचा है, जी हाँ, और राष्ट्रीय वेशभूषा में अपना स्थान बनाकर दुनिया भर में जोधपुर का झंडा फहरा रहा है। अब हमारा साफा ये जो है सिकुड़कर बारात के स्वागत के समय वर वधु के निकट संबंधियों के सिर की ही शोभा रह गया है। इसी साफे को जोधपुरी स्टाइल सा बंधवा कर अपने सिर पर रखवाने को आतुर है आजकल की जो सुशिक्षित नई पीढ़ी। इसे बंधवाने के लिए वो विवाह के अवसर पर बूढ़े बडेरों को खोजती फिरती है कि वो उसी स्टाइल में इसे हमारे सर की शोभा बढ़ाए। लेकिन साथी श्रोताओं, इसके साथ ही कोई अगर देशी या विदेशी विशिष्ट अतिथि राजस्थान आ जाता है, जोधपुर आ जाता है, तो उसके स्वागत के समय सिर्फ और सिर्फ जोधपुर की चुनरी या बंधेज का जोधपुरी शैली में बंधा साफा ही उसके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। मानो लगता हो कि साफे ने वह जादू सीख लिया है जो कि सिर पर चढ़कर बोलता है। तभी श्रोताओं, कहा जाता है ना कि जो हमारा अपनायत वाला शहर है जोधपुर, इसकी अपनायत तो ऐसी है कि कहीं भी जाओ पर एक ही बात याद रहती है कि ये जो दिल है वो इसके बिना कहीं लगता नहीं।

श्रोताओं, जोधपुर शहर की हम बात कर रहे हैं तो जोधपुर के लिए ही एक कहावत प्रसिद्ध है कि जोधपुर रा खंडा और जोधपुर रा खावण खंडा प्रसिद्ध है। तो जोधपुर की बात की जाए और खाने की बात ना हो तो ये संभव नहीं हो सकता। घूमना फिरना ये सब अलग बातें हैं, लेकिन पेट पूजा की बात हो तो जो भोजन याद आता है, जो खाना याद आता है, और वो भी स्वादिष्ट खाना, वो तो जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है श्रोताओं कि जोधपुर के जो लोगों के दिलों का तक जाने का रास्ता है वो सीधा उनके पेट से होकर गुजरता है। यहाँ का जो खान पान है वो इतना समृद्ध और हैवी है कि अगर आप सख्त डाइटिंग पर है ना तो जोधपुर शहर में पधारिएगा मत, क्योंकि जो खाने की जो खुशबू आएगी वो आपकी डाइटिंग का जो दृढ़ निश्चय आपने लिया है ना उसको कमजोर कर देगी। जी श्रोताओं, जोधपुर में सुबह की जो शुरुआत होती है वो गर्मा गर्म मिर्च बड़े समोसों के साथ होती है। तीखे चटपटे आलू के मसाले से भरी मोटी मिर्च और ऊपर से बेसन की क्रिस्प कोटिंग, क्या बात है, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। और इसे खाकर जो स्वाद आता है ना वो तो एक अलग ही इमोशन है। तीखे की बात तो हमने कर ली, लेकिन तीखे के बाद मीठा तो बनता है। जी हाँ, मीठे के लिए हमारे यहाँ की मशहूर है मावे की कचौरी, जिसका कोई मुकाबला नहीं। और मावे की कचौरी का जो इन्वेंशन

है वो जोधपुर में ही हुआ था। जी हाँ श्रोताओ, ड्राई फ्रूट्स और खोए से भरी कचोरी जब चाशनी में निकल कर नहा कर बाहर आती है तो जन्नत का एहसास करा देती है। श्रोताओ, जोधपुर की एक ऐसी सिग्नेचर डिश है जिसके बारे में बाहरी लोग बहुत कम जानते हैं, केवल जोधपुर वासी ही इससे वाकिफ हैं और अब तो यह बाहरी लोग भी इसे जानने लगे हैं, और वो है हमारी शाही कबूली। जी हाँ, नाम सुनकर ही जो बाहर के लोग हैं वो पहले चौंक जाते थे कि क्या ये कोई नॉनवेज डिश है, लेकिन ये कबूली, शाही कबूली, एक बेहद अनूठा और शाही वेजिटेरियन पुलाव होता है। जी हाँ श्रोताओं, इसमें चावल के साथ बेसन के गट्टे, तली हुई ब्रेड के टुकड़े, काजू, किशमिश, अनार के दाने, सेब के टुकड़े और ढेर सारा गाढ़ा दही मिलाकर परत दर परत इसे जमाया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, यहाँ तक कि शादियों और त्योहारों की सबसे बड़ी शान होती है शाही कबूली। जी हाँ, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। ऐसा ही है हमारा जोधपुर शहर जो सभी को अपना लेता है।

श्रोताओं, वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता है, कब एक घंटा बीत गया पता ही नहीं चला, और अब घड़ी की सुइया इशारा कर रही है आपसे विदा लेना होगा। तो दीजिए कविता सांकला को जोधपुर इन्फोटेनिया कार्यक्रम से इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल कीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेलिया, आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय दिन के 12 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रूपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रूपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंच गया।

0: ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादों की महफिल सजाई है महेंद्र कपूर की आवाज से। पहला गीत हम सुनते हैं अमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत से सजा हुआ।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव।

0: मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यादों की महफिल में। आज हमने सजाई है यादों की महफिल महेंद्र कपूर की आवाज के साथ। तो आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे गीत फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, हसरत जयपुरी इसके गीतकार हैं, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार।

0: गीतकार हसन कमाल के बोलों के साथ, संगीतकार रवि के संगीत के साथ सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज को हम सुन रहे थे निकाह फिल्म के इस गीत में।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: डलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और एन दत्ते के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जो कि लिया गया है नवरंग फिल्म से। भरत व्यास के बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

0: हम सुन रहे थे गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ. और यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. आज हमने याद किया महेंद्र कपूर को उनकी आवाज के साथ.
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी. आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा.
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था. हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था. जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं. ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई.
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर तय कर रहा है एक बढ़िया मजबूत सी बात को और बड़े प्यारे से जज्बात को, और इन्हीं बात और जज्बात के बीच में बात आती है कि सुरीला सफर में हम जो इबारत देते हैं, आज इबारत कौन सी है? तो आज की इबारत है कि वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है। वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, एक गीतकार अपनी कलम से जिंदगियां लिखता है। और अब आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है, बताएं और अपने पसंदीदा गीतकार के बारे में सोचें और लिखें अवश्य ही, और उनका कौन सा गीत सुनना आपको पसंद है ये भी अगर आप बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और आज की इस इबारत भरे सुरीला सफर में हमने जो इबारत दी उस पर बहुत सारे विचार आए हैं और प्रत्येक विचार अपने आप में उम्दा है, सटीक है, सत्य है, और उनमें से कुछ विचार जो है वो हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की प्रश्नवाची इबारत स्वयं ही संपूर्ण उत्तरित है। गीतकार, कवि, शायर और नगमा निगार वो हस्तियां हैं जो अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से रचनात्मक और सृजनात्मक आवेश की सृष्टि कर रचनाओं और पाठकों का दिल में घर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं आज की संपूर्ण इबारत ही दिल की धड़कन ही लिखती है। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गीतकार केवल शब्द नहीं लिखता, वह अपने भाव, अनुभव, संवेदनाओं को गीतों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। गीतकार के लिखे गीत कभी प्रेम का संदेश देते हैं, कभी जीवन की सीख, कभी उम्मीद, कभी प्रेरणा का सहारा बनते हैं। वो अपनी कलम से ऐसी दुनिया रचता है जिसमें हर श्रोता अपने मन की कहानी खोज लेता है। इसलिए गाने केवल मनोरंजन के नहीं हमारे जीवन की धड़कनों के संगीत भी होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों की वो जो विधाएं हैं उनको बड़े अच्छे से सजा दिया है। लिखते हैं रोमानी गीत, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, साहिर जी, ये आप बताइएगा ये सही लिख रहे हैं नहीं। दार्शनिक जीवन दर्शन, शैलेंद्र गुलजार, आनंद बख्शी, प्रगतिशील विचारधारा, कैफे आजमी, देशभक्ति, कवि प्रदीप, गोपालदास, नीरज, प्रेम धवन, सुगम और विविध, मजरूह सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण, भक्ति, पंडित नरेंद्र शर्मा, भरत व्यास, पंडित इंद्र जी, बिल्कुल बहुत सारे इन्होंने बातें लिखी हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में जितने भी गीतकार, शायर और कवि हैं सब अपनी जगह महान थे, सब किसी एक को पसंद करना कठिन है। और ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा है कि कठिन है। हमारे श्रोता लिखते हैं बोलती फिल्में आने के बाद फिल्मों में गीतों का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यही गीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी बनने लगे। गीतकार और संगीतकारों की मांग बढ़ने लगी, फिर गीतकार कवियों, शायरों के सामने चुनौती आने लगी।

कोई एक लक्ष्मण ने देखा कि अंदर उनको रहना पड़ा, गीत कहानी सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखने पड़े और गीतकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक से बढ़कर एक गीत लिखकर मिसाल पेश की है। गीतकार शब्द कागज पर नहीं उतरते, वे सीधे दिल में उतर जाते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। उनकी रचनाएं सुनकर लगता है जैसे भी हमारे अनकहे एहसासों को आवाज दे रहे हों। अच्छा गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखता, वह यादें भावनाएं रिश्तों की खुशबू में पिरो देता है। ये बात बड़े अच्छे से वह लिखते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं। एक प्यारी सी बात कहेंगे कि गीतकार वह दीपक है जो शब्दों की लौ से भावनाओं का संसार रोशन कर देता है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। और इस बढ़िया सी सोच को, इस बढ़िया से विचार को पढ़ने के साथ ही हम आपको गीत सौंपने वाले हैं। और पहला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं, उस गीत में पूरा जो गीत है उस गीत में कोई एक पंक्ति होगी जो आपको जाकर दिल में चुभती होगी या दिल को सुकून देती होगी। तो बताइएगा वो पंक्ति कौन सी है, वो लिखकर हमें भेजिएगा और उसके साथ ही इस गीत के संगीतकार का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बताइए इस गीत की कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है, साथ ही संगीतकार का नाम भी।

अपनी तो आंख एक है, उसकी है हजार। ये कौन चित्रकार है? ये गीत हम सुन रहे थे बूंद जो बन गए मोती फिल्म से मुकेश की आवाज में। गीतकार भरत व्यास ने इसे लिखा है और सतीश भाटिया ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये खूबसूरत सी नगमे जो लिख जाते हैं या जिनने अपनी धड़कनों को शायद पिरो दिया है शब्दों के माध्यम से, कितना खूबसूरत है। हमारे श्रोताओं ने

0: दिया है शब्दों के माध्यम से, कितना खूबसूरत है। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत से भी हमने पूछा था कि आपकी पसंदीदा पंक्तियां कौन सी हैं, तो हमारे श्रोता लिखता है ध्वजा से हैं खड़े हुए ये वृक्ष देवदार की, आहा कितनी बढ़िया है ना। हमारे श्रोताओं ने कवि की कल्पना का चमत्कार, यह उम्दा लाइन जहन में आती है जी बिल्कुल। हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये कौन चित्रकार है, ये कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है, बिल्कुल सही। हमारे श्रोता ने बताया कि जितेंद्र पर फिल्माया गया कवि प्रदीप की यह बेहतरीन रचना है और संगीत सतीश भाटिया का। हमारे श्रोता ने पसंदीदा पंक्तियों में तो पूरा ही लिख दिया, तपसियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेर दार घेर दार घाटियां, ध्वजा सी ये खड़े हुए, ध्वजा सी ये खड़े हुए रुकश दीवदार की, गालीचे ये गुलाब की, बगीचे ये बहार की, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है जी बिल्कुल। कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंखें एक है उसकी हजार हैं जी। ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है जो सबको पसंद आ रही है। हमारे श्रोताओं ने, अच्छा आप हमारी हवाइन गिटार के बारे में बता रहे हैं जो हमने शुरुआती जो फिलर बजाया था उसके बारे में आप बात करें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इसकी हर पंक्ति पसंद है जी बिल्कुल। हमें भी, हमारे श्रोता ने बताया कि बहुत खूबसूरत गीत है और प्रकृति का बड़ा प्यारा सा चित्रण है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, बेहद खूबसूरत पंक्ति है जी बिल्कुल। हम कोई एक शब्द को पकड़ सकते नहीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं गीतकार का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, या कहते हैं कि गीतकार अपने मूड के हिसाब से लिखते हैं, उनकी लिखनी से मोती टपकते हैं जो हमारे हृदय को छू लेते हैं। कितना खूबसूरत गीत हमने सुना है, अब इस गीत के बाद अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनके प्रिय गीतकार जो हैं वो साहिर लुधियानवी हैं। मिर्जा गालिब अगर जिंदा होते तो साहिर की शायरी सुनकर वाह वाह कह उठते, ऐसा उनका कहना है। और चोट खाया प्रेमी हो, सभी तरह के गीत लिखे उन्होंने, जिंदगी भर साथ निभाने वाला, बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीतों के बारे में उन्होंने कहा है। और उसके बाद हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी दुनिया के सभी गीतकारों ने अपने खास अंदाज में बेमिसाल गीत दिए हैं, उनमें से एक चुनना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, हमें भी बहुत मुश्किल है। अब 1957 में आई फिल्म साधना में मर्द को जन्म देने वाले गीत के लिए उन्होंने बहुत प्यारा गीत दिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, ये गीत सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये गीतकार अपनी कलम से क्या खूबसूरती से उस बात को, उस भावना को निकाल देते हैं जिसे कहना शायद शब्दों में कठिन पड़ जाए, शायद गद्य में कठिन पड़ जाए, पर पद्य में बड़े प्यार से लिख देते हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि जो इनके गीतों के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सिर्फ तीन शब्दों में लंबी बात है और शब्दों का चित्रण निरूपण विश्व को रचने वाले रचनाकार की प्रतिभा का बहुत बड़े तरीके से हम आकलन करेंगे। और गीत रचना किसी संगीत धुन और भावनाओं का गहरा पुल है और अनुभवों को छू लेती है। और सच बात है, गीतकार शब्द नहीं लिखते, हमारे श्रोता लिखते हैं वे शब्दों के जादूगर होते हैं जो चंद शब्दों में पूरी दास्तान पिरो देते हैं। हमारी खुशियां, आंसू, यादें सब कुछ अनमोल म्यूजिकल बैकग्राउंड बना देते हैं। आमजन कहीं कह नहीं पाते वो बातें गीतकार, कवि और शायर अपने शब्दों में कह देते हैं। सही बात है। और इन्होंने तो, एक और हमारे श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों के नाम भी लिखे हैं और हम उन सब गीतकारों की उस कलम को प्रणाम करते हैं कि क्या बढ़िया लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वह सोच रही हैं कि अब वह लिखना बंद कर देंगी, यानी सिर्फ सुनेंगी। ऐसा मत कीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, बाकी समय जो आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो शायद उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वह आपकी ही कलात्मकता को बढ़ा रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो आप जरूर
1: ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम गणगौर।

0: बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।
1: इमारत कितनी भी ऊंची और शानदार क्यों ना हो, पण तूफान सु बचाएड़ी राखे बिरी नींव, और ठीक भी है कोई भी परिवार कितो भी आधुनिक हो पण विने बिखेरण सु बचाएड़ो राखे बडेरारो आशीर्वाद।
2: बिल्कुल इन्हीं विचार साथे स्वागत है सगली सखियारो कार्यक्रम गणगौर रे मायने, और साथ साथ आपरे साथे है आपरी दो सखियां
1: कोमल राठौर
2: और पूनम देवड़ा,
1: तो दोनों रा घणे है थरकसु राम राम,
2: राम, राम।
1: तो पूनम जी, आज रोज को कार्यक्रम है वो कोई उत्सव सु कम नहीं होने वालो है, क्योंकि उत्सव है बी पीढ़ी रो जखा आपने चालनो सिखायो, और वो सम्मान है बहाता रो जकारी आंगलियां पकड़ आज आप मुकाम तक पहुंचे हाँ। तो चलो शुरुआत करा आज कार्यक्रम री, अपना घर और समाज रा अनमोल रतन अपना बुजुर्ग असु, और आज रो खास गणगौर कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है माटी रा संस्कार
2: बडेरा रो सत्कार।

बिल्कुल पूनम जी, और आज रही टेम रे मायने आपा इतना व्यस्त हो जावा कि घर रा जका कोना रे मायने अपना जका बड़ा बुजुर्ग है, दादी सा दादो सा या अपना माता पिता नाना नानी है कोई भी है, तो अपना जका आपनो रास्तो देख लिया होया करे। कभी आप सोचो कि वाने आपा सुकाई चीज है, कोई महंगी गाड़ी तो कौन चीज है, बड़ो बड़ो सो घर भी वाने कौन चीज है, वाने चीज है बस थोड़ो सो भगत, थोड़ो सो प्रेम और थोड़ो सो सम्मान। अब आप सोच रहे हैं कि आ बात है ना तो सब कहे, पर आ बात है कि बहुत जरूरी हुआ करे, क्योंकि कोई परिवार में बुजुर्ग भी अगर कोई कोई बात रे वास्ते आपने बार बार टोक रिया है तो वह बात भी सही है, क्योंकि भी आपने सही रे वास्ते टोकिया करे। आपा कहीं आप गुस्सा करने लग जाओ कि आपन बार बार क्यों समझा रही है, पर आ बात सही हुआ करे भी आपने जो

0: भी राय देवे बात सही हुआ करे
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल और क्या वे कि घर मायने बुजुर्गारी मौजूदगी उन वट वृक्ष की तरह होया करे जो पूरे परिवार ने अपनी ठंडी छावरे मायने समेटने राख्या करे इनारे जीवन रो अनुभव इनारी सीख और इनारी मुड़कते मुंडेरी छवि समाज री असली पूंजी होया करे परिवार मायने बुजुर्गारी ठोड सगला सु ऊंची और आदर समान होया करे वे केवल उम्र मायने मोटा नहीं होया करे बल्कि पूरे परिवार री जड़ होया करे जिया बिना जड़ रो रूखड़ो नहीं टिक सके बुजुर्गारे बिना परिवार नहीं चल सके मुश्किल वक्त रे मायने वे बड़ी ढाली तरह है जिको खड़ा हो जाया करे जिंदगी रा कष्ट देखियोड़ा होवे सुख भी देखियोड़ा होवे और उन्होंने कर हर समस्या रो है जिको समाधान मिल जाया करे
0: बिल्कुल समाधान मिले और इन्हें तो कहवे कि अनुभव वाली जिकी खुली किताब है वे अपना बड़ा बुजुर्ग या करे जकर हर पन्ना अपने जिंदगी में जीनो सिखावे अनुभव रो खजानो अपा वाने माना और कोई भी उतार चढ़ाव हुए जका भी अपना आपरा जीवन में देखेड़ा हुआ करे इनरे वास्ते अपने बुरा टेम रे मायने सही मार्गदर्शन भी करे और एक सलाहकार रूप में अपनी मदद करे और कोई भी कामकाजी महिला है या बच्चा ने भी है जो को अगर वे है वहां के भरोसे आपा छोड़ सका और अपनी अगर भाषा री बात करा अपनी परंपराएं री बात करा अपने इतिहास री बात करा तो वे आपने परंपराएं बतावे इतिहास रे बारे में बतावे जका ने आपा भूलता जा रहे हैं तो वह जका अपना बुजुर्ग है वे बार बार अपने याद दिलाता रहे कि अपनी ए परंपराएं ही अपना ए रीति रिवाज है अपना ओ इतिहास
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल वे संस्कृति रो मतलब खजानो हो सके आप यू कह सका मैंने कि संस्कृति रो खजानो और संस्कार जिकी नींव है वे अपने बताया करे है और क्योंकि देखो एक बात मैंने याद आ रही जब आपकी हो कि भाई दादा दादी रीति रिवाज अपन समझाओ तो मारे भी जब दादी सा नहीं तो कोई भी तीज त्योहार आ तो कोई भी उनसे जुड़ा जो भी रीति रिवाज रस्म होता कर रहे मायने तो सब वे पहले से ही सभा ने ऑर्डर दे देता कि भाई त्योहार आ रही है तो आपने इन संबंध में आज तैयारी करने रखनी है घर रहे मायने तो कुल मिला जब अपना तैयारी करता तो एक अलग ही अनोखो आनंद होता आजकल त्योहार में वह रौनक देखने को नहीं मिले
0: कौन मिले और एक चीज और आपा नोट करा ना तो आ चीज है कि जब भी आपा मुसीबत में हुआ था सबसे पहले आपा ने बुजुर्ग याद आवे चाहे पहले आओ चाहे मत आओ पर मुसीबत रे टाइम में आपा ने याद आवे क्योंकि वे आपा ने सही सलाह देवे और सही राय देवे और कोई भी बुजुर्ग री जकी टोक है या कोई मार्गदर्शन है युवाओं ने जो गलत रास्ता पर जाने वास्ते रोके नशा री लत हुई या कोई अपराध है विने बढ़न सु भी है जका बुजुर्ग है आप बहुत बड़ो योगदान देवे तो पूनम जी कुल मिलार बात करा बुजुर्ग जका है बे घर रे मायने जो को छायादार पेड़ हुआ करे वीर जिया हुआ जका री छाव रे मायने पूरो परिवार सुरक्षित रहे फलतो फूलतो रहे
1: बिल्कुल तो अपना फर्ज है कि आप उनारी सेवा करा और उनारा आशीर्वाद लेवा और थोड़ा सो वक्त उनारे वास्ते निकाला
0: बिल्कुल

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो कोमल, जब बड़ा बुजुर्ग बात कर ही रहा तो सखिया ने एक फोन आउट बातचीत सुना था वेणा संबंधित।
4: बिल्कुल,
3: तो आज के कार्यक्रम में फोन आउट के माध्यम से आमंत्रित है डॉक्टर आभा चौधरी, जो वृद्धावस्था देखभाल और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विशेषज्ञ है। वे वृद्धावस्था देखभाल, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सहायता और परामर्श, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और हाशिए पर पड़ी महिला वारे कौशल विकास रे वास्ते पूरे भारत रे मैंने व्यापक रूप से काम कर रहा है। तो सुनावा आपने कोमल राठौड़ री इनासु बातचीत।
5: आपने घर रे आंगन रा बुजुर्ग बे दिया है जका खुद जे घर पूरा घर ने उजास देवे, पर आज रा भगत रे मायने कदे कदे ओ दियो हवा रे झोंका सु कमजोर पड़न लाग जावे, और आ बुजुर्ग ने संभालन वारी और सेवा करण और वाने अपना देवन रो बीड़ो उठायो है। आपने साथ जुड़ेड़ा आज रा मेहमान जका है डॉक्टर आभा चौधरी जी, जका आज आपरी संस्था रे माध्यम सु बुजुर्गारी लाठी बनिया है, जका बुजुर्गारे अधिकार वारी सेहत और सामाजिक सुरक्षा रे वास्ते काम कर रहा है। सबसे पहले तो आभा जी, आप लोग घणी और आप लोग स्वागत।
6: धन्यवाद, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ और सभी सुनने वालों को राम राम।
5: आभा जी, सबसे पहले आपने वही पूछनी चाहवा कि आज की बुजुर्ग की बढ़ती उम्र है, इन महीने शरीर की तकलीफ आ रही साथ साथ मन की बीमारियां जी है, मानसिक स्वास्थ्य माथे भी असर पड़े, और आज का टाइम ने देखा तो इन जगह बुजुर्ग है बारे जो अकेलोपन हो गयो या डिप्रेशन हो गयो, वो क्यों बढ़ते जा रही है?
6: ऐसा है कि भारत में इस समय लगभग 15 करोड़ के आसपास बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, और इसमें जो एक बहुत बड़ी संख्या है वो रूरल एरियाज में, गांव के इलाकों में रहती है, और इसमें ऐसा है कि पहले परिवार संयुक्त परिवार होते थे, सब लोग इकट्ठे साथ में गांव में रहते थे, पर अब शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए और आगे व्यापार के लिए जो ज्यादातर युवा हैं, बच्चे हैं, वो गांव से पलायन करके शहरों की ओर जा रहे हैं, इसीलिए ज्यादातर युवा अकेलापन महसूस करते हैं। माइग्रेशन जो है गांव से शहरों की ओर बढ़ती जा रही है, और खेती, जमीन और अपना बाकी घर संभालने की वजह से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, वो पीछे गांव में छूट जाते हैं। ये रही गांव की समस्या, और शहरों में अकेलापन और एकाकीपन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर

0: बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, आपस में बातचीत होती नहीं है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता लोगों में रहती है, और इस वजह से एक कटाव लोगों में बढ़ता जा रहा है, और अपनी स्वास्थ्य कमजोर होने की वजह से भी, ज्यादा एक्टिव होने की वजह से भी लोग आपस में मेलजोल थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ये जो समस्याएं हैं आजकल बुजुर्गों के लिए, इनका समाधान ढूंढना बेहद आवश्यक है।
1: बिल्कुल, आप समाधान की बात कर ही रिया हो, तो इन मायने जो को घर परिवार आ रहा है वे क्या मदद कर सके?
0: घर परिवार की जो भूमिका है, देखिए भारत एक परिवार प्रधान देश रहा है शुरू से ही। हमारे जो भी रामायण है, महाभारत है, हमारे वेद है, पुराण है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, वो अभी भी देखिए आप अगर राजस्थान में भी बोलते हैं तो आप उनको सा करके संबोधित करती हैं, जी करके संबोधित करती हैं, और अभी भी हमारी संस्कृति में जब सुबह उठते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं तो राम राम सा पैर छुए जाते हैं वरिष्ठ नागरिकों के, उनको देवी को माँ का स्वरूप कहा जाता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उन्हें देवता तुल्य माना जाता है। तो परिवार की इसमें तो सबसे अहम भूमिका है, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें बड़ा किया, जिन्होंने हमारा संरक्षण किया, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, उनके प्रति हमारी जवाबदेही बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उस जिम्मेदारी से आज का युवा, बच्चे, बहुएं, बेटियां पीछे नहीं हट सकते।
1: बिल्कुल आबाजी, बिल्कुल सही की आप। और देखो, अपन घनी बारो भी देखने में आवे कि जिसका काम का जी बुजुर्ग हुए या कोई नौकरी कर रहा हुए और जब वे रिटायर्ड हो जावे तो फिर बाद में समाज सु कटे कटे रहे, तो विन टाइम माने समाज जो की मुख्य धारा है विशु जोड़ियों रखने वास्ते जानकी एक्टिव एंजिंग है, सक्रिय बुढ़ा को है, इन अवधारणा किया समझा सका, इन्हें सब है जगह किया समझ सके।
0: मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो स्वयं बुजुर्ग की है। वो जैसे कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो अगर अपने आप को कमजोर ना समझें, बेकार ना समझें, बूढ़ा ना समझें, तो क्या 104 साल के एक जो मैराथन धावक थे कनाडा में, उनकी हाल फिलहाल कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई, जो व्यक्ति 104 साल की उम्र में मैराथन दौड़ सकते हैं, और जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, और भी देखिए किसान हैं, आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए क्या 60 साल की उम्र में किसान रिटायर हो जाता है? नहीं। तो इसको जो प्रोडक्टिव एजिंग कहा जाता है, सक्रिय वृद्धावस्था या स्वस्थ वृद्धावस्था की जाती है, उसकी शुरुआत बुजुर्ग से ही होती है। यदि आप स्वयं को सक्षम समझें, स्वस्थ समझें और समाज के लिए उपयोगी समझें, तो आपको कोई घर में नहीं बैठा सकता। आसपास के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, सामाजिक संगठन है, आप वहां जाइए, लोगों से मिलिए, अपने हम उम्र लोगों के साथ कोई ना कोई ग्रुप बनाइए।
1: बिल्कुल, और आपने जो की संस्था है बुजुर्ग वास्ते कौन कौन सा काम है जो को करिया करे, और आपने जो को तजुर्ब है बिन हिसाब से गांव रेवन वाला जगह बुजुर्ग है, माने सेहत से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसकी रो सामना करना पड़े?
0: सन 2000 में मैंने लगभग 26 साल पहले, एग्जैक्टली 26 साल पहले, उत्तराखंड के छोटे से गाँव गढ़वाल में मैं वरिष्ठ नागरिक जो महिलाएं हैं उनके लिए काम करती थी, और वहाँ पे मैंने देखा कि वो गांव में जंगल में जाती हैं, खेत में जाती हैं, 12-12 घंटे काम करती हैं, और उनको उचित स्वास्थ्य सेवाएं या उचित उनको जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। तो मेरे मन में तब आया और अनुग्रह संस्था मैंने सन 2000 में शुरू की, और पिछले 26 वर्षों में हम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, ऐसे कई राज्यों में हम काम करते हैं, खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, अकेले रह गए हैं, या उनके लिए कोई भी और सुविधा प्राप्त उन्हें नहीं हो पाती है। तो अनेकानेक कार्यक्रम हम भारत सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ, संवेदीकरण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनको देने वाली सुविधाएं, रियायतें, सब जानकारी उन तक हम पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल, और बात अगर आप बुजुर्ग अनुभव भी करा तो वो भी अपनी सफलता में कई काम आवे, तो इरो लाभ है जो की आज की पीढ़ी क्या उठा सके, या फिर आपका कोई एडो

0: उदाहरण है जैसे जो बुजुर्ग जको है भगवान डाबरारू साचो मार्गदर्शन करियो होवे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर युवा पीढ़ी का सटीक और लाभकारी मार्गदर्शन बुजुर्गों द्वारा किया जा रहा है। हमारे कितने सम्मान केंद्र, स्वाभिमान केंद्र जैसे मैंने बताया अनुग्रह के चल रहे हैं, तो हमारा जो प्रयास है वो है अंतर पीढ़ी माने इंटर जेनरेशनल बॉन्डिंग। जो पहले हम अपने नाना नानी दादा दादी मम्मी पापा के साथ एक परिवार इकट्ठे बैठ के रामायण सुनता था, कथाएं सुनता था, या दोनों पीढ़ियां साथ में त्योहार मनाते थे। सारे देखिए आपके यहाँ तीज होता है और कितने त्योहार होते हैं, तो उसमें क्या बुजुर्ग महिलाएं, नानी दादी सास, क्या सारे जो हमारे पुराने एक ट्रेडिशन थे, हमारे संस्कार थे, तो वो क्या आगे पीढ़ी को वही तो पास ऑन करती थी। आप अगर घर की वरिष्ठ नागरिक महिला का रोल लीजिए, तो आज भी पाचन में आपको कोई भी कुछ सामग्री घर में बनानी हो तो आप सबसे पहले फोन अपनी माँ को ही करती हैं या अपनी सासू माँ को ही करती हैं। वही तो सब बताती हैं कि किस प्रकार से पूजा हो, अनुष्ठान हो, और बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि खेती बाड़ी में किस तरह से हो। ये जो सारी जानकारी है ये वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा ही तो मार्गदर्शन मिलता है, तो वो आगे अपनी कौशल को, अपनी नॉलेज को आगे युवा पीढ़ी को ट्रांसफर करते ही हैं। उसके बिना तो आप ये लगाइए कि बिना पन्नों की किताब हमारी डिक्शनरी और हमारा एनसाइक्लोपीडिया तो वरिष्ठ नागरिक ही है।
0: पर आप जो वृद्धावस्था विज्ञान विशेषज्ञ होने साथ लैंगिक मुद्दा भी आप जानकार हो, तो एक बुजुर्ग आदमी और एक बुजुर्ग महिला की जो की तकलीफ है भी मायने बुनियादी फर्क का ही हो गए।
1: ये रेखांकित करना बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष का बहुत मुश्किल है। देखिए दोनों की जो उम्र बढ़ती है दुख तकलीफ तो शारीरिक और मानसिक दोनों को ही होती है। समस्याएं और एकाकीपन लगभग समान रूप से दोनों को ही प्रभावित करता है, पर महिलाओं, क्योंकि देखिए मैंने जो पीएचडी की करीबन 24 साल पहले, मैंने वरिष्ठ महिलाओं पर ही शोध किया। करीबन 1000 महिलाओं को मैंने उनका इंटरव्यू लिया और करीबन 200 गाँव में मैं गई गढ़वाल के, और वहां पे मैंने उनको स्टडी किया कि उनकी विशिष्ट परेशानियां क्या है। पूरी उम्र पहले पति पे और फिर बच्चों पे निर्भर रहती हैं, उनको थोड़ा बहुत खर्चा के लिए, दवाई के लिए भी अगर पैसा चाहिए होता है तो वो उनके सामने ही निर्भर होती हैं। अपनी अपनी इनकम का सोर्स पेंशन के अलावा वरिष्ठ नागरिक महिला के पास बहुत ही कम होता है। दूसरी प्रॉब्लम, अपनी सेहत के प्रति वरिष्ठ नागरिक महिला बहुत उदासीन होती है। समय पर भोजन ना करना, समय पर दवाई ना लेना, कैल्शियम ना लेना, आयरन ना लेना, बढ़ती उम्र के साथ जो उनको सप्लीमेंट्स की जरूरत है वो ना लेना, पहले परिवार को वो आगे रखती है, उनका भोजन, उनका पानी, उनकी देखभाल, 12-12 घंटे उनकी देखभाल में लगी रहती है, अपने लिए समय नहीं निकालती, तो वो केयर गिवर ही बनी रहती हैं सारी उम्र। और जब 70 साल की हो जाती हैं तो फिर जोड़ों का दर्द या बाकी चीजें उन्हें सताती हैं। तो सबसे मेरी ये अपील रहेगी कि आप अपनी स्वयं सहायता समूह बनाएं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, अपने लिए बचत करें और अपने उम्र की महिलाओं के साथ बाहर जरूर कुछ समय निकालें।
0: बिल्कुल, और आप इस संसार जो इतना साल सफर रे मायने कोई एडी घटना या कोई एडो बुजुर्ग जकारी कहानी आपने दिल रे ज्यादा पास में हुए जो को आपने काम करने की नई प्रेरणा दी हो?
1: जी बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहानी जरूर बताती हूँ, क्योंकि 1999 के दिसंबर में और घोर ठंड में जब मैं 8000 फीट की ऊंचाई पे एक गढ़वाल के गाँव में, टिहरी गढ़वाल के गाँव में, मैं शाम को अपना शोध कार्य करके अपनी वापस बस स्टॉप की तरफ जा रही थी, तो मैंने देखा कि दो बुजुर्ग महिलाएं अपनी पीठ पे कम से कम 10-15 किलो का वजन का लकड़ी बांध के, बिल्कुल वो दोहरी हो रही थी, इतना बोझ था, और वो चली जा रही थी। तो धीरे धीरे हम भी उनके साथ चल पड़े धीरे धीरे बस स्टॉप की तरफ, तो फिर मुझे लगा कि इतना बोझ है ये अम्मा कैसे उठा रही होगी। तो मैं शहर से आई थी, इतना तो हमें जानती नहीं थी, तो हमने उन्हें कहा कि अम्मा जरा लाइए हम आपके हाथ लगा दें, तो वो दोनों हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम इसका आधा बंडल भी नहीं उठा पाओगे बेटा, हम तो ये इसके आदि हो गए हैं हम तो।

0: पिछले 20 साल से 25 साल से ये कमर पे लाद के भूसा और ये लकड़ी, हम तो ये अपने गांव जा रहे हैं, हम तो चले जाएंगे। तो हमने कहा कि अरे आप आराम क्यों नहीं करती हैं, आप ये इस उम्र में भी ये काम क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हमारी घर में इज्जत और हमारा स्थान बना हुआ है। जिस दिन हम काम छोड़ के बैठ जाएंगे, दूसरों पे निर्भर हो जाएंगे और रोटी रोटी के लिए दूसरों पे मोहताज हो जाएंगे, तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हमारा आदर सम्मान खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये बात उनसे सीखी कि अपने को एक्टिव रखना, स्वस्थ रखना, सक्रिय रखना, चाहे 80 साल की उम्र हो। देखिए हम लोग अभी योग दिवस मनाएंगे तो उसमें हम हजारों वरिष्ठ नागरिकों को ये प्रेरणा देंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में हम नियमित योग करें, संयमित आहार लें और समय समय पर डॉक्टरी चेकअप करवाएं। और परिवार में, देखिए परिवार में उतनी ही इंटरफेरेंस करें जितने बच्चे बर्दाश्त करें, अपनी अपनी हॉबीज को हम कल्टीवेट करें। ये सब चीजें मैंने पहाड़ की महिलाओं में, क्योंकि मैं पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत रही हूँ, तो उन महिलाओं से मैंने ये सब चीजें सीखी।
1: बिल्कुल, और आज की जुवान पीढ़ी है, जैसे आप व्यस्त जिंदगी रे मायने, अपने माँ बाप ने, दादा दादी ने भगत को नहीं दे पा रहा, उन्होंने आप एक विशेषज्ञ और समाज सेविका रे नाते कहीं सीख के सलाह देनी चाहूला।
0: देखिए ये आपको बताना चाहती हूँ अनुग्रह की चेयरपर्सन और एक समाज सेविका के रूप में कि वरिष्ठ नागरिकों को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और वो विशेषकर युवा पीढ़ी से। 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वृद्ध जनों के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है उसके प्रति जागरूकता दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो उसके अंतर्गत हम दिल्ली और बाकी राज्यों में भी हम कार्यक्रम करते हैं ताकि परिवार के सदस्यों को ये बताया जाए कि वरिष्ठ नागरिक बेकार नहीं है, रिटायर इज नॉट यूजलेस, ठीक है। तो हम लोग उनकी सतत सहभागिता करें, सतत समावेश हो, अंतर पीढ़ी जो इंटर जेनरेशनल गैप है उसको खत्म हो, इसके लिए हमें कई योजनाएं बनानी है और उनके अनुभव और कौशल को हमें रोजमर्रा, उनकी सीख को हमें उनका लाभ उठाना है। तो हम अगर वरिष्ठ नागरिक एक वृक्ष की तरह है, उनकी छाया, सुरक्षा, शीतलता और उनका फल हमें चाहिए, तो हमें युवा पीढ़ी से ये विशेष अनुरोध करना होगा कि एक दिन आप भी बुजुर्ग बनेंगे। ये सृष्टि की नियम है, ये सृष्टि का प्रक्रिया है कि आप भी उस स्थिति में एक दिन आएंगे। तो जैसा प्यार, सम्मान और संवेदनशीलता आप अपने लिए चाहते हैं, वही सम्मान आपको अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को देना ही होगा, क्योंकि जो हम आज बोएंगे वही कल हमारे सामने आएगा। तो कर्म किया हुआ कहते हैं ना वापस आता है, तो ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में आज से ही सिखाना जरूरी है। जो माँ बाप बच्चों के सामने व्यवहार करेंगे वही वो आगे चल के आपके साथ व्यवहार करेंगे। यही मेरा संदेश है कि बोझ नहीं है बुढ़ापा, ये एक ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा वरदान है जो समाज और देश को आगे तक अग्रसर करता ही है।
1: बिल्कुल सही है डॉक्टर आभा जी, आज आप बुजुर्गरी, सेहत बारी, मानसिक स्थिति बारी, कानूनी अधिकार माते जी गहरी जानकारी दी हो, बस हमारे वास्ते ही खासी मददगार साबित हुएला। तो आभा जी आज आप कीमती भगत निकालो जोधपुर आकाशवाणी से जुड़िया और बुजुर्ग से जुड़ी बढ़िया जानकारी भी दी, इनके वास्ते आप पूरा जोधपुर आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपका, आपकी पूरी टीम का, जोधपुर आकाशवाणी का और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद प्रकट करती हूँ।
2: तो सखिया आभार आपा सुनी कोमल राठौड़ री फोन रे माध्यम से बातचीत डॉक्टर आभा चौधरी सु, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्धावस्था और महिला सशक्तिकरण क्षेत्र रे मायने विशेषज्ञ है।

0: तो कोमल बूढ़ा बड़ेरारी बात कर रहा, तो एक कहावत बताऊं आपने?
1: बिल्कुल बताओ।
0: तो बूढ़ा बड़ेरारी बात ज्या रांदियोड़ी खात, मतलब बुजुर्गारी बात और उनारी सलाह हमेशा पकेड़ा भोजन की तरफ फायदेमंद और जीवन ने आसान बनाने वाली होया करे। और बूढ़ा बुजुर्गारो जीवन आसान बनाया करे अपन परिवार रो सहयोग और थोड़ो सो अपनो योगदान।
1: बिल्कुल, क्योंकि ओ जको उम्र रो पड़ाव हुआ करे पूरम जी, इन मायने आर जका अपना दादा दादी है, अपना माता पिता है, थोड़ी थोड़ी बात भी भूलन लाग जावे। जैकि आप सुनते हैं कि सब पहले तो चश्मों कट रख दियो, बिने रख कर भूल गया। जना भी अपन बार बार पूछता रहे तो इन्हें विज्ञान की भाषा में डिमेशिया या अल्जाइमर की शुरुआत किया करे। और एड़ा टेम आते अपने गुस्सो नहीं करना चाहिए, बल्कि विन टेम आते वाने प्रेम सु समझाओ, वाने साथ री जरूरत हुआ करे। क्योंकि दवाइयां सु ज्यादा किया करे ने की दुआ है जकी काम आवे। तो जब वारा बच्चा पढ़न या नौकरी करने लाग चले जावे तो वहां में अचानक सु खालीपन आ जाया करे, अचानक सु उदासी वार माइन आ जावे, जिन्हें एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम की हो जावे। और कई बार अपना जका बुजुर्ग है वे रिटायरमेंट रो जको मतलब है वो विन अंत माने, या फिर पन आ जकी एक चीज हुआ कर वह एक नई पारी री शुरुआत मानी जाए। वाने कहो कि आप रो जको अधूरो शौक है, जिया बागवानी है, कोई ने लिखनो पसंद हुए, कोई ने पेंटिंग, कोई संगीत, वाने शुरू करण रो जको मौको है वो वाने देव, वाने निराश मत होंदो, वाने हमेशा प्रेरित करो।
0: बिल्कुल सही कहो कोमल, इन दौरान थोड़ा मानसिक तनाव ज्यादा हो जाए करे, तो उन मानसिक तनाव ने दूर करने वास्ते आप लोगों मेल मिलाप कर सको हो, आप जो भी पसंदीदा आप जो शौक है वह ना आप पूरा कर सको इन समय। और थोड़ी सी कसरत शरीर ने जरूरी होया करे, तो हल्की फुल्की जो कसरत है वह आप कर सको। और खाना में भी आप हल्के थोड़ा हल्को भोजन ले तो वो भी शरीर वास्ते फायदेमंद रहा करे। समय समय बाद डॉक्टर जांच कराता रहो, बीपी चेक कराता रहो, तो वो भी आप वास्ते थोड़ा सही रहेला।
1: बिल्कुल, और आप हम उम्र जका लोग एवं साथ बैठो, कोई लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लो, या कोई भी एक्टिविटी को जकम आप इंटरेस्ट रखो, फिर मायने आप है जो को आगे बढ़ सको। साथ ही देखो सब बड़ी चीज आ करे कि घर बुजुर्ग है वारी देखभाल जको एक सदस्य री जिम्मेदारी हुआ करे, पर पूनम जी एड़ो बिल्कुल नहीं है। एक

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: तो कोमल, दादा दादी रो लाड तो आज भी याद आवे, क्योंकि जब कोई भी चीज या अब लावणी जिद करता तो मम्मी और पापा तो मना कर देता, पर व्यार छाने छाने दादा दादी अपन वह चीज जरूर दिला देता। अपन रोवन कौन देता कभी भी, मम्मी जब भी मारती नहीं तो मारन भी कौन देता।
7: डांट पड़ती भी टाइम डरता की माँ बाप टोकन उपेली देखता की कटी दादा दादी तो कन्ने नहीं चुप। तो ये बात है जो की आज भी याद आवे, क्योंकि बुजुर्ग जका अपना दादा दादी जका अब उनको प्यार है जो कोई एक अलग ही हो।
6: बिल्कुल, और कटे भी वे जाता तो साथे जाऊंगी जिद भी करता अपन मेरे, और वे लेर भी जाता कभी अपन रोवान तक होनी, रो तो छोड़न जाता भी कोनी कि नहीं, और रोवेला तो मेरे जीत दुख पाव। तो एक कहावत भी है वर मते कि बाल थोड़ा मतलब तावड़ा में ही कोनी है, यानी कि जो सफेद बाल वाला उम्र रे हिसाब हो जावे तो वे उम्र रो नहीं बल्कि जीवन रे कड़ा अनुभव और संघर्ष रो प्रतीक होया करे है।
7: बिल्कुल।
6: और अब आप बात करो वेने कानूनी अधिकार और सरकारी योजना वाली, तो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कानून, कानून माता पिता री देखभाल री जिम्मेदारी है जिको बच्चा री होया करे। अगर कोई बच्चो एडो नहीं करे, वेरी देखभाल नहीं करे, तो बुजुर्ग ने कानूनी सुरक्षा रो अधिकार है।
7: बिल्कुल है, और भारत सरकार जो की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, वो भी बुजुर्ग की देखभाल और सुरक्षा रे वास्ते हमारी मदद रे वास्ते जिया की योजना चला रखी है, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान योजना, जो की बुजुर्ग की देखभाल रे वास्ते और डॉक्टर ने, नर्स ने और वारा परिवार रा सदस्य ने भी ट्रेनिंग दिया करे।
6: और बैंकिंग और टैक्स रे महीने छूट, बुजुर्ग ने FD पर ज्यादा ब्याज मिले, और इनकम टैक्स रे महीने भी विशेष छूट दी जावे, रेलवे और बस रे महीने भी उनारे वास्ते विशेष सुविधा है जिको करी जाया करे।
7: बिल्कुल, और अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत देश भर में मायने जिता भी वृद्धाश्रम है, कंटिन्यूएशन केयर होम चलाया जावे, जटे बेसहारा बुजुर्ग ने मुफ्त रेवन रे वास्ते और भी खानो पीनो, दवाइयां और मनोरंजन की जकी सुविधाएं है, बे सारी अंतर्गत मिलिया करे। और पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, जको अब बुजुर्ग ने बैंक री लाइना में लगन की जरूरत कोनी, बे घर बैठे आपरो स्मार्टफोन सु या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा करवा सके, जकरी जानकारी भी कोई भी जानकार हुए या कोई भी आसपास मित्र है भी परसों आप ले सके।
6: और जो भी असहाय बुजुर्ग है, मैंने कोर्ट कचहरी जितना भी काम है, विन सारो मुफ्त वकील और कानूनी सलाह दी जाए करें। और मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, तो हर महीने जो भी बुजुर्ग असहाय है वे पेंशन के रूप में मैंने राशि मिला करे जो सीधी वेर खाता रमाइन आया करे। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, बुजुर्ग ने बीमारी रे वगत अस्पताल में मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा मिला करे है। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, देश का जो भी बड़ा तीर्थ स्थल है व्यारी मुफ्त हवाई या रेल यात्रा करवाई जाया करे है।
7: बिल्कुल, इन साथ साथ ही देखा कि कठे जो की बुजुर्ग की स्थिति है, बस ही कौन रहे अपने करने आस पास या आड़े पड़े एडा बुजुर्ग भी होवे, जगह कोई सहारो नहीं हुए या कोई परेशानी में वे हुए, तो अगर आपके ध्यान में एडा कोई बुजुर्ग है तो आप वारी मदद कर सको, क्योंकि भारत सरकार एडा ही बुजुर्ग की मदद रे वास्ते एक विशेष टोल फ्री

0: नंबर जारी कर लिया है, जगह है
1: जगह नंबर है 14567, एक बार
0: बिल्कुल।
1: वापस सु 14567। इन माते कॉल करना है, आप जो भी आपकी शिकायत है, कोई सलाह है वह ले सको हो।
0: बिल्कुल, और आप कोई भी पेंशन या भावनात्मक मदद है भाभी वो जो कोई पे वो आपने दे सके हैं।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: तो कोमल, दादाजी ने छड़ी मन भी मारी, एक पुरानी बात याद आएगी। मार भी पड़ दादा का एक छड़ी होती, तो मैं कहीं करता वह जो चालता नहीं, मैं भी वह छड़ी ले नकल करता और वह जो चालता, और कई बार रमत रमत में वह छड़ी अटी उटी रख देता, और जब वह चाहिए थी तो वह ढूंढता, और गुस्सा भी हो जाता कई बार। और गुस्सा तो यू भी होता जब कोई भी काम समय पर नहीं होता नहीं तो वह गुस्सा हो जाता, क्योंकि वह दिनचर्या पक्का हा, वह जो चीज जिन टाइम चाहिए वह उन्हीं टाइम वह हाजिर मिलनी चाहिए थी, नहीं तो वह नाराज हो जाता।
6: बिल्कुल।
5: और नाराज होना भी जाया जाए, क्योंकि देखो दिनचर्या हुई तो निरोगो और रिया करा पाने, क्योंकि वे 100 साल की उम्र रे मैंने भी बिना चश्मा रे देख लेता, और आज तो छोटा छोटा बच्चा रे भी चश्मा लागन लाग गया।
6: बिल्कुल, देखो भले ही वे बूढ़ा हो जाओ लेकिन किया करे ना कि कोई ना कोई खास बात बामे जरूर ही वे आपरो हौसलो को नार था, और किया भी करे कि हौसलो जो को है वो बूढ़ो को नहीं हुआ, बल्कि अपन जो की सोच है वह बूढ़ी हो जाए करे। और अब आज की अपन अठेरा कई बुजुर्ग साबित कर चुका है और कुछ कर भी रिया है, क्योंकि वे जगह है बढ़ती उम्र में शारीरिक और सामाजिक चुनौतियां ने साइड में रखकर एक नई शुरुआत भी करी, और साथ ही साथ अपना विश्व स्तर माते पहचान भी दिलाई। जियन की आप बात करा बीकानेर रा पानी देवी, जका 94 साल री उम्र रे मायने गोल्डन दीदी रे नाम से जानी छे, और 90 साल री उम्र में पार करन रे बाद भी पहली बार बे खेल मैदान में पैर रखियो, और बे एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप रे साथ ही कई प्रतियोगिता में वे दौड़ कर जियन की शॉर्ट पुट गोला फेंक के, भाला फेंक के, बीर मायने भी 1600 भी ज्यादा गोल्ड मेडल जीत और देश रो नाम रोशन करियो।
5: बिल्कुल। और लालजी भाई प्रजापति सिर्फ 17 साल री उम्र में ग्लूकोमा रे कारण इनारे आंखें रोशनी चली गई, पर वे अपनी कमजोरी ने ताकत बनाई और ढलती उम्र

0: भी हजारों दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों ने कंप्यूटर ट्रेनिंग मोबिलिटी और आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते रोजगार का नया अवसर दिया।
1: बिल्कुल, और किरण भाई जका 82 साल का हा और चेन्नई अरी जकी रेवन वाला हा और बे मार्गदर्शन माते एक पोता रा मार्गदर्शन माते वे ट्रेनिंग शुरू करी जिरे माई ने आज बे 82 साल री उम्र में भी 80 किलो तक वजन उठावे जको वारे स्वालम भी और फिटनेस ने बताया है।
0: और गोपाल दादा री बात करा जका जयपुर सु है तो जयपुर शहर री भीषण गर्मी में गोपाल दादा 78 वर्ष री उम्र में भी लाड़ लग कई साल सु एक अनूठी मिसाल बनने रोजाना सड़क किनारे आपरे माटी रे मटके रे साथे बैठे और वटे सु गुजरने वाला हर प्यासे व्यक्ति ने डिलीवरी बॉय ने राहगीर ने मुफ्त ठंडो पानी पिलाने भारत री जी की पारंपरिक प्यौरी परंपरा है उन्हें जीवित रख दिया है।
1: बिल्कुल, और 95 साल री उम्र रे माई ने अलवर रा लालू राम सैनी जका साबित करियो की उम्र दौड़न री रफ्तार नहीं रोक सके। बे राजस्थान स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 95 साल की उम्र में 100 मीटर की जकी दौड़ है वे पूरी करर युवा माने दांत रे तले अंगुली दबावन माते मजबूर कर दिया।
0: और बात करा द्विजेंद्र नाथ घोष री, पश्चिम बंगाल रे बसंतपुर रा रिटायर्ड शिक्षक जो रिटायरमेंट रे बाद भी आपरे गांव और आसपास रे पिछड़ा बच्चा ने मुफ्त कोचिंग देने रो और उना रे परिवार ने शिक्षा रे प्रति जागरूक करने रो अभियान शुरू करियो।
1: बिल्कुल, और डॉक्टर भक्ति यादव जका है बे पहली महिला डॉक्टर हा 1952 सु मरीजा रो इलाज शुरू करियो हो बे और उम्र बढ़न रे बाद भी बे 91 साल तानी यानी आपरा आखिरी वगत तक बे आर्थिक रूप से कमजोर महिला रहो महिला मारो और मरीज रो मरीजा रो मुफ्त रे मायने बहुत ही कम फीस में इलाज करियो जकारे वास्ते वाने पद्मश्री सम्मान भी मिलियो।
0: अंधुराम दास असम रा सेवानिवृत्त शिक्षक 85 री उम्र में भी खो खो खेलने बढ़ावो देवन सारू 1000 सु भी ज्यादा विद्यार्थियों ने प्रशिक्षित कर चुकिया है। और बात करा रुक्मणी देवी तल्लूरी री तो 70 वर्षीय रुक्मणी देवी 50 वर्ष री उम्र में फेर सु खेल री दुनिया में वापसी करी और हाल ही में वे एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पोल वॉल्ट में रजत और हैमर थ्रो में कांस्य पदक जीती हो।
1: बिल्कुल, और दिल्ली रा मेडिसिन बाबा जी ने कहवे जका है ओंकार नाथ जका 85 साल री उम्र रे मायने दिल्ली री सड़का रे माथे पैदल चाले और लोगा रा घरा में जार बचेडी जकी भी दवाइयां है जकी काम में नहीं लिएडी है बंद तो बा दवाइयां ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगा रे मायने बे बांटे। यहां भी आपने मंगला आमले हुआ हरभजन कौर हुआ ए बहुत ही समाज री भलाई हो या फिर आत्मनिर्भरता री बात आवे तो जकी झुरियां सु बरेड़ा हाथ है देश री दिशा है जकी बदल सके और वो भी साबित हुए कि उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं है और उम्र सिर्फ एक उम्र नहीं है बल्कि अब एक नंबर ही है जो कि बढ़ती उम्र और हौसला ने कम नहीं होने देवे।

0: पूनम जी किया करे कि जका बुजुर्ग लगातार काम में व्यस्त रहे या शारीरिक और मानसिक रूप से सब ज्यादा स्वस्थ रिया करे और कहे किसान सवेरे जो पावा चालसी भी को हिवड़ो हमेशा खिलसी।
1: बिल्कुल सही क्यों, माँ बाप री आशीष जटे दुख दर्द कदे भटके कठे, मतलब कदी नहीं भटके वे जटे माँ बाप री आशीर्वाद होया करे वे कने दुख दर्द बिल्कुल नहीं भटकिया करे।
0: बिल्कुल, और बैठिया बैठिया हाथ पे हिलाओ सांधारी जकड़न ने दूर भगाओ।
1: बिल्कुल सही क्यों, और गरारे में जे बुजुर्ग मुस्कुरावे तो समझो साक्षात लक्ष्मी आवे।
0: रोज सवेरे जो प्राणायाम करसी वो लंबी उम्र और निरोगी जीसी।
1: बाप दादा रा बोल अमोल जीवन में बनाओ अनमोल।
0: बिल्कुल, 30 लाख बारो मत करो इंतजार।

0: दिन भर घूंट पानी पियो बार बार।
1: उमंगर अनुभव रो मेल बुजुर्ग है मारा असली खेल।
0: थाली में राखो राबड़ी दड़ियो और साग, कब्ज भागेली थे देखियो भाग।
1: धीरज धर्म और अनुभव रो ज्ञान बुजुर्ग है मारी असली साग।
0: और कम करो लून खांड और तेल, बीमारी रो मिट जासी खेल। बिल्कुल, और दूध दही खाओ और बैठो थोड़ी धूप, हड्डियां मजबूत राखबारो ओई छे रूप।
1: अखबार बांची या

0: बिल्कुल पूनम जी, ये जकी पेड़ री शाखाया है कितनी भी ऊंची हो अगर वाने जड़ा सु काटो जावे तो वे सूख जाया करे। तो ये जका बूढ़ा बढ़ेरा बुजुर्ग है ये अपने परिवार री जड़िया है, आने सहज रखो आने सम्मान दो, प्रेम करो, वारे कन्ने बैठो, वासु जीवन जीवन रो सलीको सीखो। और आज रो कार्यक्रम जको है माटी रा संस्कार बढ़ेरा रो सत्कार आई सीख है जकी आपने देवे।
1: बिल्कुल, और आज रे आपके साथ ही आपकी दो सखियां कोमल राठौर और पूनम देवड़ा, और कंसोल पर आपने गीत सुना रहा रेखा भाटिया, और एचपीटी से सहयोग कर रहा विक्रम सिंह भाटी, राय सिंह राव, एफएम ट्रांसमीटर पर आसीएल सोनी, और कंट्रोल रूम से सहयोग कर रहा गजेंद्र सिंह राठौर, और कार्यक्रम में संयोजन और प्रस्तुति हो मनीष कुमार सोलंकी।
0: बिल्कुल, और अबे आप दोनों सखियां ने दिलाओ सीख, चाला
1: राम राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी और एफएम सनसिटी चैनल है। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने के बाद कुछ क्षणों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने

0: पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांवों में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी।

0: समिति हट्टा बद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार 2रे और 3रे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(1)

0: के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
1: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से मन्ना डे की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत परिवार फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत ऐसी चंद तपन दिग्नाथ राम तत राम तत राम तत।

ओडनिया लहके मृदंग धनका झट झट झट झट नागिन दे दे सगन नगादा इत झट झट झट झलम झट झट सगन का सगन का इत झट झट झट सगन का जी सगन नदा साधा झट सगन का साधा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा Da thiyat thiyat, da thiyat thiyat, da thiyat thiyat.

0: उसकी एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।

0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत भाई भाई फिल्म से, ये गीता दत्त की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप सबका मंगल हो। प्रणाम, नमस्कार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, श्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों की दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही हूँ।
0: शबाना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: उमरी खदाना।
0: उमरी खदाना
1: जी।
0: अच्छा, बताइए क्या करती हैं आप?
1: एक टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इधर तो अपनी दुकान पर रखी।
0: तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ, जैसे सामान होते हैं LED, बिजली पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधार के भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
0: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं?
1: जी हाँ।
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे, क्योंकि इतने समझदार हो गए?
1: हाँ, काफी समझदार हूँ। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12 साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
0: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: जी हाँ, रेडियो सुन लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, टीवी में रेडियो चला लेते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया विराम मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: हेलो सहेली।
4: हेलो सहेली।
3: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
4: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे।
3: नीता मिश्रा
4: जी, नीता, आप कैसे हैं?
3: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी। मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
4: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से।
3: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं। बताइए लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
4: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है।
3: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
4: नहीं, बहुत बूंदा बांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस।
3: तो जब थोड़ी बूंदा बांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि उमस बहुत हो जाती है।
4: बहुत ज्यादा।
3: तो बताइए आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
4: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना।
3: किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
4: फिलहाल तो नॉवल अच्छे लगते हैं, जैसे गोदान है, गवन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है, मैंने लगभग 8-10 तो नॉवल पढ़े ही पढ़े हैं। और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती है, मेरी सहेली है,
3: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो आप पढ़ना पसंद करती हैं। बाकी आप उपन्यास बहुत सारे, जैसे आपने बताया मुंशी प्रेमचंद जी के अधिकतर उपन्यास आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छा साहित्य आप पढ़ती हैं, जिसमें हमें
4: पढ़ना
3: बहुत...
4: मतलब लगभग तो सभी कुछ छोटे थे तो कॉमिक्स में बहुत पढ़ते थे, कॉमिक्स का जमाना तो गया, लेकिन अब ये किताबें बढ़िया लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब बचपन में हम थे तो कॉमिक्स का जमाना था और वो भी आपने बहुत पढ़ी हैं। आप गाने सुनने की भी शौकीन हैं, तो किस तरह का संगीत पसंद है आपको? आज के जमाने के जो आज के दौर के गीत हैं वो पसंद करती हैं?
4: भी पसंद है, लेकिन पुराने गाने, ओल्ड गोल्ड कहा जाता है, तो पुराने गाने ज्यादा पसंद है, खासतौर से लता जी से।
3: तो उस सुनहरे दौर का लता जी का गाना आपकी पसंद का अगर हम पूछें तो वो कौन सा गीत है?
4: बहुत सारे हैं।
3: आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं वो बताइए।
4: मुझे सुनना है मैं हूँ खुश रंग हिना, हिना फिल्म का गाना।
3: आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला अहिल्या नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा 3री कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए हैं अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो को सभी चैनल में सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: जब मौका मिलता है ना तब भी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा, तो बताइए आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली।
1: बताइए, कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
2: मधुर पारेख।
1: मधुर पारेख, मधुर पारेख, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
2: जयपुर, राजस्थान।
1: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
2: बहुत सुंदर है।
1: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
2: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
1: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
2: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
1: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
2: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहां जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं
1: जी,
2: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जैसे कि गोविंद देव जी।
1: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
2: जी बिल्कुल।
1: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
2: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
1: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
2: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
1: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जब कदम रखते हैं, वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
2: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
1: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
2: जी
1: कितने समय से आप कर रही हैं?
2: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
1: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
2: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
1: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
2: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
1: मधुर जी, आप हमें ये बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
2: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, हम किनसे बात कर रहे हैं इस समय, कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम।
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: जी मैडम।
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी डाला जाता है खाने के अलावा, जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा दीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है, वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है,
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा बिगा दिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह की सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं झांसी से बोल रही हूँ, रत्ना।
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: बस मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है।
1: जी मैम।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: जी मैम, ये तो 20 साल हो गए मेरी शादी को।
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी?
1: जी मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए, तो इधर ही रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे शादन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।

0: क्यों अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
1: अभी। हाँ छोड़ा है मैंने अभी, मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है
1: जी, 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं, अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है तो बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं, खास तौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी अभी स्टार्ट किया है। हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है तो उस पर चढ़ना ही अपने आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
0: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
0: निकिता जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए, तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
0: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक अहरवार बात कर रही हूँ।
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से कॉल लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: बुगावड़ी।
0: बुगावड़ी।
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम। वही तहसील खुरई पे साइड है बुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस।
0: तो आपका जो गांव है वहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही पे है पथरिया, तो वहीं पे पढ़ती हैं।
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: साइकिल 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने की?
1: नहीं मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है?
1: या मैम।
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं?
1: हाँ मैम।
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: मैम अभी 1 साल पहले।
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं?
1: यस मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और साथ में जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव शिवगढ़ के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो शिवगढ़ है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैम मुझे सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना और मतलब सॉन्ग को गाना। मैम मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहाणे है।
0: प्रतिभा रहाणे जी, आप कहाँ रहती हैं, किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योग आश्रम नाम से। वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलंटियर जाती हैं?
1: हाँ।
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ, वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ,
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: हाँ, तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी
1: जैसे हेल्थ के लिए तो, फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ जिस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगा अभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते तो अंदर से खुश होते हैं।
0: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है।
1: हाँ,
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

0: अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टू, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मन स्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहां जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई है।
1: जिंदगी कैसी है पहले

0: रघु तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभव ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहाँ, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

और वादा मेरा है, पर माँ मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है। मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली देवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहां हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा

की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विवाह के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर, परिवार, समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन मिल गया तुमको। अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में

उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए? अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें।

तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी, तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा का फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तलखी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी और तब आप कार बाहर

कार खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया, क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को, कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी। आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीख ही तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा।

कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेटकर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

वो खफा क्या हुए? जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाए गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी

0: मानो कहा अब तुम हो जवा मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है। बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने, नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: प्रस्तुति कार्यक्रम तराने नए पुराने
1: तराने

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुधाकर शर्मा का लिखा ये गीत सुना। आवाजें के सुनिधि चौहान और साथियों की थी। फिल्म का नाम था हमराज।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन
0: लाया? कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में योगेश का लिखा हुआ, युगल स्वर आशा भोंसले और यशुदास की। फिल्म का नाम है छोटी सी बात।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये स्वर थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। फिल्म का नाम था ये गुलिस्ता हमारा। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म सफर का गीत सुनवा रहे हैं। गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की है।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने फिल्म सफर का गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं फैज अनवर का लिखा गीत। डब्बू मलिक का संगीत है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें। फिल्म का नाम है मैंने दिल तुझको दिया।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में। समाचारों के बाद कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का रिले कुछ ही पलों में किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है। इनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1000 करोड़ रुपए था।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: प्रधानमंत्री मोदी इस समय पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और

0: जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्धनों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। भारत की विदेश नीति ने देश को विश्व बंधु के रूप में स्थापित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुशल स्टेशन प्रबंधन के लिए स्टेशन मास्टरों को सशक्त बनाने संबंधी व्यापक उपायों की समीक्षा की है। रेल मंत्री ने कल वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेशन मास्टरों के प्रतिदिन के कार्य और उनके प्रबंधन को सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें मल्टी ट्रैक और उच्च घनत्व के खंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। अश्मिता चालिहा मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। सेमीफाइनल में कल अश्मिता का सामना कोरिया की पार्क गायून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

हेलो हाय गुड इवनिंग, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट राधिका राठी, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। तो करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

तो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त राधिका राठी के साथ। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो हर खुशी, हर दुख, हर मुश्किल में हमारे साथ रहता है, और वो इंसान होते हैं हम खुद। लेकिन क्या सच में हम खुद के दोस्त हैं? आपने देखा होगा, हमारे पास दोस्त, परिवार और सोशल मीडिया सबके लिए समय होता है, लेकिन खुद के साथ 10 मिनट बैठना भी मुश्किल लगता है। तो एक सवाल आज आप सबके लिए, आखिरी बार आपने खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए क्या किया था?

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: दोस्तों, इस अंतराल से पहले मैंने एक सवाल किया था आपसे, आखिरी बार आपने खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए क्या किया था? तो शायद आपने सोचने पे आपने देखा होगा कि आपको ये याद आया होगा कि आपने दोस्त की खुशी के लिए ये किया, आपने अपने परिवार की खुशी के लिए ये किया, लेकिन खुद की खुशी के लिए मुश्किल है। हमें लगता है कि अकेलापन दुख देता है, लेकिन अकेले रहने से हमें खुद को समझने का मौका भी मिलता है। कभी कभी खुद की कंपनी भी एंजॉय करनी चाहिए। तो अब से अपने मन की बात सुनना और खुद से पूछना, मैं सच में कैसा महसूस कर रही हूँ? ध्यान रखना, खुद के मन की बात सुनना कमजोरी नहीं, समझदारी है। ये भी याद रखें कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी एक इंसान आपके साथ रहता है, और वो आप खुद हैं। जिस तरह हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं, उसी तरह खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी है। खुद से प्यार करना शुरू करें।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त राधिका राठी के साथ गुड इवनिंग छत पर। अगर हम बात करें प्यार की, प्यार का

हमें साथ निभाना, इंतज़ार करना और रिश्तों को बचाना याद आता है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी को छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्यार बन जाता है?

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा पौधे उगाइए पर्यावरण बचाइए
4: आज ही पधारे लालजी नर्सरी रानोजी का बाग खोखरिया बिरामंडो
3: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए
5: लालजी नर्सरिया कुछ समय हरियाली में बिताओ।
6: दोस्तों इस अंतराल से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, क्या कभी किसी को छोड़ देना भी प्यार हो सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार का मतलब किसी को हमेशा अपने पास रखना होता है, लेकिन कई बार हर रिश्ता मंजिल तक पहुंचे ये ज़रूरी नहीं। कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं, पूरी कहानी नहीं। कभी कभी जब रिश्ते में लगातार दुख, मजबूरी या घुटन हो, उसे पकड़े रखना दोनों के लिए तकलीफ बन जाता है। प्यार में सुकून होना चाहिए, सिर्फ संघर्ष नहीं। हर रिश्ता साथ रहकर खूबसूरत नहीं बनता। कुछ लोग दूर होकर भी दिल में सम्मान और प्यार छोड़ जाते हैं। उनकी यादें रहती है लेकिन शिकायतें नहीं। कई बार सबसे मुश्किल फैसला वही होता है जिसमें हम अपने दिल के खिलाफ जाकर किसी की खुशी चुनते हैं, और यही प्यार का सबसे शांत रूप हो सकता है।

दोस्तों प्यार ज़रूरी है, लेकिन खुद की पहचान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको खुद को ही खोना पड़े तो रुक कर सोचना ज़रूर। हर कहानी का हैप्पी एंडिंग साथ रहना नहीं होता, कुछ कहानियों की हैप्पी एंडिंग बस इतनी होती है कि दोनों लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें।

कभी कभी दूरियां भी ज़रूरी हो जाती है, कुछ दास्तां अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती है। हर प्यार का अंजाम साथ रहना हो ये ज़रूरी नहीं, कुछ मोहब्बतें अलग होकर भी अमर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो अब सिर्फ यादों में है, तो उसकी अच्छी बातों को संभाल कर रखिए, क्योंकि कुछ लोग साथ नहीं रहते लेकिन उम्र भर दिल में रह जाते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त राधिका राठी के साथ गुड इवनिंग जोधपुर। क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारा दिल सच में बोल पाता तो सबसे पहले क्या कहता? कई बार हम बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। डर, झिझक, अहंकार या हालात हमें रोक लेते हैं। दिल में बातें जमा होती रहती है। कई बार हम अपने माता पिता से प्यार तो करते हैं लेकिन जताते नहीं। अगर दिल बोल पाता तो शायद सिर्फ इतना कहता, आपकी वजह से ही मैं हूँ। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे महीनों बातें नहीं होती लेकिन दिल में उनके लिए वही जगह रहती है। तो शायद हमारा दिल उनसे भी कह पाता कि तुम दूर हो पर अजनबी नहीं।

दोस्तों, दिल को महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उसे चाहिए अपनापन, सुकून और समझने वाले लोग। दिल की खुशी अक्सर छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। दिल की हर बात कह देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उसकी हर बात सुन लेना ज़रूरी होता है। आज घर जाते वक्त या शाम के वक्त कभी भी समय निकाल कर एक बार आप अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा।

दोस्तों, अब घड़ी में समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। आज का सफ़र बस यहीं तक। मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट राधिका राठी, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से रिले कार्यक्रम।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला बस कुछ ही पलों में।

0: ये स्वर थे लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम था एक ही रास्ता। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना ये गीत। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर है कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: भारतीय सेना। अभी आप सुन रहे थे ये गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर था कैलाश खेर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: जयमाला कार्यक्रम में आप सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का गाना। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाल।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध

गुलशन बाबरा का लिखा गीत था ये और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के थे फिल्म जंजीर के लिए।

0: तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर फिल्म अभिमान के लिए गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: ये स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे फिल्म अभिमान के लिए,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के

0: जाने माने लेखक हरिशंकर राठी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जयमाला कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतर।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये स्वर है आशा भोंसले और किशोर कुमार के फिल्म का नाम शरीफ बदमाश, रचना आनंद बख्शी की, धुन राहुल देव बर्मन की।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्धसत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह आवाज़ें लता मंगेशकर की फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और

0: गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, किशोर कुमार की आवाज और फिल्म का नाम ब्लैकमेल।

लीजिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सईद राही का कलाम, गायक स्वर राजकुमार रिजवी का।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंद्रधनुष के तहत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए झलकी पुरातत्व के तत्व। लेखिका है नाज़नीन और निर्देशन है चंद्र प्रभा भटनागर का।
1: दुकान लग गई?
2: हाँ दुकान तो लगा दी मैंने। तू चाय लाया?
1: हाँ उस्ताद।
2: अरे तो देना।
1: बड़ी फर्स्ट क्लास चाय बनवा कर लाया हूँ।
3: ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या कर रहा?
2: अरे मुंशी जी आइए आइए।
3: क्या? अबे ये क्या है साहब?
1: कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही
3: है, ऐसे ही। अबे आधा फुटपाथ घेर रखा है और कहता कुछ नहीं। अब ये कैसा खटरा फैला रखा? ये क्या?
1: दरअसल दरअसल हम लोग पुराना माल बेच रहे हैं।
3: समझा बेटे?
2: बात ये है कि ये तो बात को हमेशा घुमा फिरा कर बोलता है। वैसे हम लोग डेकोरेशन पीसेस बेच रहे हैं।
3: डेकोरेशन? अबे ये क्या होता है?
1: डेकोरेशन पीसेस यानी सजावट के टुकड़े।
4: अबे तुम कुछ देर अपनी चोंच बंद रखो,
1: ठीक है?
2: मुंशी जी ये चीजें ड्राइंग रूम वगैरह में सजाने के काम आते हैं।
3: अच्छा तो बेटा तू क्या मुझे नया समझता है?
4: अजी नहीं।
3: अबे 24 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, 24 साल से। अरे लोग भूतान सीन सीरियल कैलेंडर घर पे सजाते हैं या ये कबाड़ है?
4: कबाड़? क्या कह रहे हो मुंशी जी?
2: अरे भाई ये पुराने जमाने की अनमोल चीजें हैं।
3: चल चल अच्छा अनमोल ही सही है, मगर कौन रखेगा अपने वो क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में?
2: अब लीजिए। अरे अमीर लोग और कौन है? अरे दूसरों पर रब मारने के लिए ये लोग इन्हें अपने घर में रखते हैं भाई,
1: ताकि सोसाइटी की नाक ऊंची रहे।
2: अब आप इस घड़े को देखिए, देख रहे हैं ना?
3: पुराना है
2: जी। हाँ देखने में मामूली है, मगर हजारों साल पुराना है।
3: बे क्या कहा, हजारों साल?
2: जी हाँ, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकला था।
3: ये क्या?
1: और इस संदूक को पहचानते हैं? इससे वास्को डी गामा पुर्तगाल से अपने साथ लाया था।
3: अच्छा अच्छा सुन जी, बहुत बुकरानी छाड़ चुके हैं, आप सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ,
1: सीधे हो जाओ,
3: ठीक कर दूंगा।
2: हाँ
3: ये डंडा देखा है? अबे ये डंडा देखा है?
2: जी हाँ।
3: ये चंगेज खां का है, चंगेज खां का, जिससे उसने बड़े बड़ों को सीधा कर दिया है। लेकिन अब मैं तुम दोनों को सीधा कर दूंगा। हाँ बता देता हूँ
2: मुंशी जी। ये वाकई चंगेज खां का डंडा है।
1: ऐसा कीजिए मुंशी जी,
3: क्या
1: ये डंडा हम लोगों को दे दीजिए?
2: जी हाँ,
4: हम इसे अच्छे दामों में बेच देंगे।
3: मैं कहता हूँ
1: जी उठाओ,
3: ये उठाओ, उबक तुबक उठाओ यहाँ से। अबे सरकार ने फुटपाथ लोगों को चलने के लिए बनाया है, न कि एक कबाड़ फैलाने के लिए। बड़ा दुकान मैं कहता हूँ, बढ़ाओ, चलो कम हो यहाँ, कम हो जाओ, कम हो जाओ।
1: मैं कहता हूँ देखिए, ये नहीं हमको, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे।
3: अबे खाल में रहे, खाल में बहुत चबड़ चबड़ न कर। नेतागिरी छाड़ी ना तो एक ही ठंडे में भेजा खोपड़ी से निकाल कर वो पार्क में वहाँ भेज दूंगा। समझे?
2: जाने दीजिए दारोगा जी, बच्चा है अभी।
3: हाँ बेटा मक्खन लगा रहा है, दारोगा कहकर मेरा ओहदा बढ़ा रहा। अबे तू क्या समझता? अबे क्या समझ

0: तेरे इतना कहने में मैं पसी जाऊंगा।
1: अरे दारोगा, दारोगा क्या, आप तो हमारे लिए थानेदार से भी बढ़कर हैं। क्या चले
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हमारी सरकार हैं।
0: माई बात बकवास बंद, ज्यादा जवानी मक्खन बाजी नहीं चाहिए। कुछ वो
1: ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो, किसी लोग को समझा देना।
3: बिल्कुल,
1: मुझसे एकदम से जरा बात किया करें।
3: जी हाँ बिल्कुल, और क्या। मैं कहता हूँ तू आदमी है या शामियाने का बाप है? अबे क्या जरूरत थी उसे?
4: क्या बताए क्या बताए, उसने कानून बघारा तो मुझे गुस्सा आ गया।
3: अबे वो पुलिस वाला है, वो तो कानून की बात करेगा ही।
4: भूल हो गई, अब से ऐसी पंगे बाजी से दूर।
3: शाबाश, तरक्की करोगे आगे चलकर बेटा, अगर मेरी बात मानोगे।
4: ये समस्या तो हल हो
3: गई,
4: अब समस्या है ग्राहकों की भीड़ जुटाने की।
3: अरे चेले, वो भी हल हो जाएगी, बस थोड़ी बतौलेबाजी करनी पड़ेगी।
4: बतौलेबाजी?
3: अबे हाँ, भीड़ इकट्ठा करने के लिए पहले कुछ अलूल जलूल किससे कहानियाँ सुनाना पड़ता है ना, क्या समझे?
4: समझ गया समझ गया। और जब भीड़ जमा हो जाए तो असली धंधे पर आ जाओ।
3: अबे चेले, हो जा तैयार है।
5: तो मेहरबान, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दरबार। जिसको काला कई पहर वो जिए, और जुल्फ नागिन का डसा मांग कर पानी न पिए। तो जाने वाले देख ले मुंह अपना फेर कर, अरे राह में हम भी खड़े हैं रास्ते को फेर कर। हाँ तो मेहरबान साहिबान कद्रदान, लगा कर सुनिए ध्यान। कहते हैं कि किसी जमाने में थे एक हकीम लुकमान, जिनकी थी एक बोलती हुई दवाओं की दुकान। लेकिन मेहरबान, ना तो अब रहे हकीम लुकमान और न रही उनकी वो बोलती हुई दुकान। हे लड़के बैठ जा। मगर मेहरबान कदरदान, आपके इस हसीन शहर में खुल गई अनमोल चीजों की एक बेहतरीन दुकान।
4: गुरु, ये क्या कह रहे हो, इस कबाड़ को अनमोल बता रहे हो?
1: अभी चीले, तू है अभी बच्चा, अकल का है कच्चा, तू अपनी चोंच बंद रख। अबे जिसे तू कबाड़ कह रहा है वो है बहुत कीमती और नायाब।
3: अबे चराग लेकर ढूंढने से भी नहीं होगा कामयाब।
6: अरे कुछ बताओ तो सही, आखिर ये है क्या?
5: साहिबान, इस पर गौर फरमाइए। देखने में है ये मिट्टी का ढेला, मगर इसमें छिपी है इतिहास की तीन जंगें। जी हाँ, ये पानीपत के मैदान की मिट्टी है मेहरबान। इसकी सुर्ख रंगत इस बात का सबूत है कि इस पर न जाने कितने सुरमाओं ने अपना लहू बहाया।
6: ऐसी मिट्टी लखनऊ में हर जगह मिल
7: जाएगी। परम की जो परम के पास जाओ मिट्टी को मिलो, अरे बीच से लाल ऐसी मिट्टी मिल जाएगी।
5: और साहिबान साहिबान, जरा इस पैजामे पे निगाह डालिए।
7: पैजामा?
5: ये वही पैजामा है जिसे महामूर्ख शेख चिल्ली
8: पहनते थे। पैजामा छोड़ो, इस प्याले का इतिहास तो बताओ।
1: अबे अभी बताता हूँ चिले।
5: हाँ तो साहिबान, ये देखिए, ये प्याला है, ये देख रहे ना,
6: देख रहा हूँ।
5: है तो मामूली मगर है खूनी।
6: खूनी?
5: जी हाँ, इसी प्याले में मशहूर फिलोसफर सुकरात को जहर दिया गया था।
9: अमा नखास से खरीदे हुए गूदड़ और
5: अरे सुनिए तो साहिबान, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। मैं मेहरबान कदरदान, तेरे
4: सारे ग्राहक चले गए, पल्ले का 2 रुपए भी पुलिस वाला ले गया, अब क्या होगा उस्ताद?
5: घबरा मत चेले,
1: वो देख अभी अंदर थी एक उधर हीरो।

0: की कदर करने वाला जौहरी आ रहा है।
1: उस्ताद देखने में तो नवाब नजर आ रहा है।
2: और बेटे अपना तजुर्बा कह रहा है कि ये जरूर कुछ न कुछ कर रहा है।
1: कुछ भी हो उस्ताद इसे गिरा लो, निशान न पाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए आइए आइए हुजूर। आदाब है,
3: आदाब है, आदाब है भाई। क्या देख रहे हो मियां?
2: किबला एक से एक नायाब चीजें हैं ये देखिए।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में तो
0: अरे हुजूर इनके रूप रंग पर मत जाइए।
2: सबकी सब ऐतिहासिक यानी कि तारीखी हैसियत रखती
3: है। क्या फरमाया? तारीखी हैसियत?
2: जी हाँ जी हाँ। जैसे कि हुजूर अब ये देखिए, ये पर्दा मुलाजा फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। अपने वक्त की मशहूर तवायफ उमराव जान के उस कमरे का है जहाँ वो मुजरा किया करती थी।
3: उमराव जान? हे हे हे, क्या पूछते हो हाले दिले दार है अदा। आवाजगी में हमने जमाने की सैर की।
2: आदाब आदाब है,
3: क्या बात है।
4: और बन्ना परवर, ये रही आमों की गुठलियाँ।
3: आमों की गुठलियाँ?
2: गुठलियाँ हुजूर,
3: क्या ये भी तारीखी हैसियत रखती है?
2: जी जी हुजूर। अरे इन्हें नहीं जानते आप? इन्हें चचा गालिब ने चूस चूस कर फेंका था।
3: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, भाई मिर्जा गालिब आमो को तो बड़े शौकीन थे।
4: और हुजूर इस चिराग को देखिए,
3: लगता है ये अलाउद्दीन का चिराग है।
2: बजा फरमाया हुजूर, ये वही चिराग है।
3: अरे तो मियां जरा घिसकर जिनको बुलाइए तो।
4: हुजूर गुस्ताखी माफ हो, जिन तो ना आ सकेगा।
3: क्यों भाई क्यों?
2: क्या है नवाब साहब कि जिन ने इस चिराग को छोड़कर 10 किलो वाट के बल्ब में बसेरा कर लिया है।
3: अच्छा अच्छा, वो क्या चीज है?
4: वो पानी भरने वाली मशक है।
3: माशाल्लाह भाई, इसको तारीख की किस अजीब हस्ती ने इस्तेमाल किया था?
2: लीजिए, अरे आप नहीं जानते हुजूर, ये मशक उस भिश्ती की है जिसने एक बार मोहल बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी। हुजूर
3: याद आया, याद आया। हुमायूं ने खुश होकर उसे एक दिन के लिए बादशाह भी तो बना दिया।
4: जी हाँ जी हाँ, बादशाह बनते ही उसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मुझे तो ये मशक बहुत पसंद आई। इस नायाब शय को मैं अपने गरीब खाने की जीनत बनाऊंगा।
1: हुजूर हुजूर,
3: भाई क्या कीमत है इसकी?
0: अब आपसे मोल भाव क्या करना हुजूर, सिर्फ 50 रुपए इनायत फरमाइए।
3: अमां 50 रुपए? बस इतनी नायाब चीज की इतनी कम कीमत? ये लीजिए थैली संभाल।
0: शुक्रिया।
3: 50 से भी ज्यादा की रकम है।
0: शुक्रिया हुजूर शुक्रिया।
3: अच्छा भाई तो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
0: अबे देखा चले, मैं न कहता था कि हीरे की कद्र जौहरी ही जानता है।
4: सही कह रहे हो उस्ताद, पूरी थैली ही थमा गया।
2: काफी भारी है, माल भी बहुत होगा।
1: उस्ताद खोल कर तो देखो।
0: हाँ अभी खोलता हूँ खोलता हूँ।
2: ये लो। अरे ये क्या? चमड़े के टुकड़े?
4: चमड़े के टुकड़े नहीं उस्ताद, मुझे तो लगता है ये चमड़े के सिक्के हैं।
0: क्या? चमड़े के सिक्के?
4: उसी भिश्ती के दौर के सिक्के।
0: अरे मर गए, यानी के धोखा
4: उस्ताद। धोखा क्यों गुरु? ड्राइंग रूम सजाने के लिए तारीखी मशक के बदले तारीखी सिक्के मिले।
5: पुरातत्व के तत्व। अभी आप सुन रहे थे नाजरीन की लिखी ये झलकी। निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का था। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। फिल्म का नाम था तेरे नाम।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाशु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

सुधाकर शर्मा का लिखा गीत अभी आपने हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुना। स्वर कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के थे। फिल्म का

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथी फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अनु मलिक का संगीत है, जावेद अख्तर के बोल, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें फिल्म रिफ्यूजी के लिए।

सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में अभी आपने फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत सुना। जावेद अख्तर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
1: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गाँव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
4: दिस इज द कंट्री,
5: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
2: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण

0: जन्म देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपके लिए।

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा गीत, स्वर जसपाल सिंह का, और फिल्म का नाम है श्याम तेरे कितने नाम।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंधी। गीत रचना गुलजार साहब की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का ही गाया हुआ, फिल्म का नाम है महाचोर। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का है।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: क्या?
1: अरे बाबा मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: मदन मोहन की संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के थे। फिल्म का नाम था लैला मजनू। और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को फिल्म चरस में, शब्दकार आनंद बख्शी और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिये मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आप

फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृगया के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं। पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइश ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

मिथुन की कामयाबी में उनके फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना। और ये फिल्म भी

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों, इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: अय्यर यम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
1: यू आर इन लव।
0: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहादेर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म दला

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।
1: इस कार्यक्रम

0: छायागीत के सुनने वालों को राजुल का नमस्कार। ये रात की चादर में छिपी आसमान से झरती हुई चांदनी का लहजा, ये रुक रुक कर चलती हवाओं के झोंकों की महक, चाहतों के नीड़ में कुछ बुने कुछ अधबुने से ख्वाब, और उनमें कुछ लरसते जज्बातों की मीठी सी चहक, कहती है वो दिल की जुबां जिस पर कुर्बान है ये सारा जहां।
1: जब मोहब्बत

साथ जिसके होने से वीराने भी गुलजार हो जाते हैं, दिल में महक उठते हैं कितने अरमा, और खुशबू आंखों में उतर आती है। बातों के सिलसिले में अक्सर वो एक नाम बार बार आता है और जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आती है।

एक वादा धड़कनों में सुनाई देता है, एक इल्तिजा बांधी है सांसों की डोर से। तुम्हारी खुशबू आती है हवाओं में, तुम्हारा नाम गूंजता है फिजाओं में।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन

रात हर रोज सजाती है एक नया ख्वाब, और इन आंखों ने किया है सिर्फ उस रात का इंतजार, जिसके ख्वाबों में हो बस तेरा ख्याल, धीरे से बयां हो जाए वो शबनमी एहसास।

मोहब्बत वो पाक जज्बा जिसके कदमों में झुक जाता है आसमां, यही है वो सबसे अजीम लफ्ज जिसमें सातों समंदर और ये पूरी दुनिया समा जाती है। अगर सिमट जाए तो एक नन्हा सा दिल काफी है जिसकी हर धड़कन पर लिखा हो तो सिर्फ मोहब्बत।

पानी आये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं न जाने

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये था विविध भारती का नजराना।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार का रिले किया जाएगा।
2: एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच

0: सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वीं स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हूज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality. He said,